कितना सुंदर संदेश है सुबह की पहली किरण में, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का उजाला अपना रास्ता बना ही लेता है। उसी तरह जीवन में निराशा, असफलता या कठिन समय हमेशा नहीं रहता, समय बदलता है और परिस्थितियां भी बदलती है।

दैया ताय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत धेनु चलैया जगके मोहन मन में माये नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: सबको नमस्ते।
1: और चलते चलते बस यही कहना चाहूँगी कि अंधेरों से घबरा कर सफ़र छोड़ा नहीं करते, उम्मीदों के दिए जलाकर रास्ते खोजा करते हैं। हर सुबह यही पैगाम लेकर आती है, जो बीत गया उसे भूलो, नई शुरुआत तुम्हें बुलाती है। जल्द मुलाकात होगी, आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निमू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अभी भी निलंबित है, वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप,

0: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की एआई तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
0: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।

मानना था कि ड्रीम्स आर नॉट वॉट यू सी वाइल स्लीपिंग, ड्रीम्स आर दोज दैट डोंट लेट यू स्लीप. सो डियर लिसनर्स, नेवर बी अफ्रेड टू ड्रीम बिग. आपके ड्रीम्स ही आपको आगे बढ़ाने की इंस्पिरेशन देती है. सो वेदर यू आर ड्राइविंग, रिलैक्स इन होम, वर्किंग और सिपिंग अप योर कॉफी, जस्ट स्टे विद मी. कीप लिसनिंग 101.9 FM रेनबो.

0: FM Rainbow 101.9।
1: Welcome back listeners। तो हाँ, स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। कभी मार्क्स कम आते हैं, कभी बेस्ट फ्रेंड से फाइट हो जाती है, कभी फ्यूचर को लेकर कंफ्यूजन होता है। लेकिन याद रखिएगा, एक एग्जाम में कम मार्क्स आने से आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं होती। एक रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं है। लाइफ एक लॉन्ग जर्नी है और स्टूडेंट लाइफ उस जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिएगा। हर किसी का जर्नी अलग है, हर किसी का टाइमिंग अलग है। आपकी सक्सेस का मतलब किसी और से आगे निकलना नहीं, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनना है। And now, let's dedicate the next song to all the students who are chasing their dreams one step at a time. Sindhari Akashwani 101.9 FM Rainbow with me, Ajay Abhigna. Rainbow ke life saath hai, life hai rangeen.

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक लिसनर्स। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी जगह पर जहां आसाम को छूटे हुए पहाड़ है, मॉइस्ट ट्रीज की पीसफुल एटमॉस्फियर है, कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराते हैं और हर ट्रेडिशन के पीछे छुपी है एक ब्यूटीफुल स्टोरी। यस, टुडे वी आर ट्रैवलिंग टू द ब्यूटीफुल हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम। लेकिन आज की जर्नी सिर्फ माउंटेन्स, स्नोफॉल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में नहीं है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे सिक्किम की आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड हेरिटेज के बारे में, यानी वहाँ की कला, हस्तशिल्प, परंपराएं और कल्चरल आइडेंटिटी। Did you know that Sikkim is home to different communities including the Lepcha, Bhutia and Nepali community, each contributing to its rich cultural landscape. Unke traditional clothes, folk dances, handicrafts, vegetable festivals aur food habits Sikkim ko ek unique cultural identity dete hain. Imagine kijiye, ek taraf Buddhist monasteries mein spiritual chants ki awaaz, dusri taraf ट्रेडिशनल हैंडलूम्स पर बुने करते हुए आर्टिशियंस और फेस्टिवल्स के टाइम कलरफुल मास और ट्रेडिशनल डांसेस। कितना ब्यूटीफुल कल्चरल एक्सपीरियंस होगा, राइट? सो डियर लिसनर्स, अपनी इमेजिनेशन की सीट बेल्ट बांध लीजिए, बिकॉज अब ये जर्नी शुरुआत होने वाली है।

0: वेल वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम बात कर रहे थे सिक्किम की। दोस्तों, जब हम सिक्किम के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले ब्यूटीफुल माउंटेन्स, गैंगटॉक लेक और स्नो कवर्ड लैंडस्केप्स याद आती हैं। बट सिक्किम्स रियल ब्यूटी गोज मच डीपर दैन इट्स सीनरी। इट्स हेरिटेज इज शेप्ड बाई सेंचुरी ऑफ ट्रेडिशंस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी लाइफ एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। सिक्किम बिकेम द इंडियाज 22nd स्टेट इन 1975 बिफोर ज्वाइनिंग द इंडियन यूनियन एंड इट हैड अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री एज अ हिमालयन किंगडम। दोस्तों, किसी भी जगह की हेरिटेज सिर्फ पुरानी बिल्डिंग्स या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं होती। हेरिटेज का मतलब है कि वो ट्रेडिशंस जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाती है, जैसे फैमिली के फेस्टिवल्स, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल स्टोरीज और स्पेशल ओकेशंस पर पहने जाने वाले कपड़े। सिक्किम में भी यही कल्चरल कंटिन्यूटी देखने मिलती है। जब कोई आर्टिशन ट्रेडिशनल कारपेट बनाना है, जब कोई डांसर जनरेशन से चल रहा डांस स्टेप्स परफॉर्म करता है, या जब कोई फैमिली अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, तब हेरिटेज जिंदा रहती है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ कल्चर। इट कनेक्ट्स आर पास्ट विथ आर प्रेजेंट। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अपनी रूट्स और ट्रेडिशंस को समझना हमें अपनी आइडेंटिटी से जोड़ कर रखता है। सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो।
1: King Khan, yo, honey singer.

0: वेल वेलकम बैक लिसनर्स। अब हम बात करेंगे कि सिक्किम की एक फैसिनेटिंग आर्टिस्टिक ट्रेडिशन की, तंगका पेंटिंग। तंगका पेंटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टिबेटियन बुद्धिस्ट आर्टिस्टिक ट्रेडिशन प्रैक्टिस्ड इन सिक्किम एंड अदर हिमालयन रीजन्स। दोस्तों सोचिए, एक पेंटिंग बनाने के लिए आर्टिस्ट को कितनी कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस चाहिए होगी। हर लाइन, हर कलर और हर छोटी डिटेल पर कितना ध्यान देना पड़ता होगा। तंगका पेंटिंग हमें ये सिखाती है कि आर्ट सिर्फ डेकोरेशन नहीं होती, कभी कभी आर्ट एक लैंग्वेज बन जाती है जिसके थ्रू बिलीव्स, वैल्यूज और स्पिरिचुअल आइडियाज एक्सप्रेस किए जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेडिशनल आर्ट सीखने में सालों की प्रैक्टिस लग सकती है, इसलिए आर्टिशियंस और ट्रेडिशनल आर्टिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत वैल्यूबल है। आज जब डिजिटल आर्ट और AI जनरेटेड इमेजेस का जमाना है, तब भी ट्रेडिशनल हैंड पेंटिंग आर्ट की अपनी एक स्पेशल वैल्यू है, बिकॉज एवरी हैंडमेड आर्ट वर्क कैरीज द आर्टिस्ट टाइम, स्किल एंड पर्सनल डेडिकेशन। सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन।
1: నా బైక్ లో ఇప్పుడు నాకింగ్ తక్కువగా ఉంది.
2: నా కార్ ఆల్రెడీ తక్కువ పొల్యూషన్ రిలీజ్ చేస్తుంది.
3: మరి నా స్కూటర్ పికప్ కూడా చాలా బాగుంది.
1: మీరు ఏ వెహికల్ డ్రైవ్ చేసినా E20 పెట్రోల్ యూస్ చేస్తే నాకింగ్ తగ్గుతుంది, కార్బన్ ఎమిషన్స్ 40% వరకు తగ్గుతాయి, అలాగే హై ఆక్టేన్ రేటింగ్ వల్ల అమేజింగ్ పికప్ కూడా పొందొచ్చు. మీ వెహికల్ E20కి 100% కంపాటిబుల్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ ద్వారా ప్రజల ప్రయోజనార్థం జారీ.

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भी उपस्थित थे। डॉ जयशंकर ने बहुपक्षवाद के तत्काल सुधार के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बदली वैश्विक व्यवस्था की गति को समझना जरूरी है। डॉ जयशंकर ने श्री नहयान के साथ बैठक में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने जॉर्जिया के विदेश मंत्री माका बोतचोरी शिवली से भी मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बैंकॉक में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉन हीली से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने चौथे भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद, फिनटेक बैठकों और संबंधित आईयू केएफपी बैठकों के सफल समापन पर चर्चा की। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने साझा प्राथमिकताओं, रचनात्मक और समावेशी G20 प्रक्रिया की दिशा में ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि भारत और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस साल पूरी होने की उम्मीद है। कल मुंबई में श्री सिद्धू ने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में हुई प्रगति द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चर्चा के दौरान CEPA के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार पर बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं।

0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 12.5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र ने न केवल अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
1: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में यह माना जाता है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसी तरह पर मैं कहता हूँ होप फॉर द पीस बट प्रिपेयर फॉर वॉर।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पूछा है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करेगा। इनमें हत्याओं की जांच और इंटरनेट सुविधा पर लगाई गई पाबंदियां शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में कल मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Rainbow 101.9।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, अब आते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के सेगमेंट में आखिरी पड़ाव पर। दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्किम की स्पिरिचुअल और आर्किटेक्चर हेरिटेज की। सिक्किम के मॉनेस्ट्रीज अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, पीसफुल एटमॉस्फेयर और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए जाने जाते हैं। सम वेल नोन एग्जाम्पल्स इंक्लूड रूमटेक मॉनेस्ट्री, ताशीडिंग मॉनेस्ट्री जैसे। दीज प्लेसेस आर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस लाइफ, लर्निंग एंड कल्चरल ट्रेडिशनल्स। दोस्तों, कभी कभी हम किसी ब्यूटीफुल प्लेस पर जाकर सिर्फ फोटोग्राफ्स क्लिक करने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर उस जगह की हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस को समझें तो एक्सपीरियंस और भी मीनिंगफुल बन सकता है। मॉनेस्ट्री की वॉल्स पर बनी पेंटिंग्स, प्रेयर व्हील्स, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और पीसफुल सराउंडिंग्स, हर एलिमेंट के पीछे एक कल्चरल या रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। ये प्लेसेस हमें पेशेंस, रिफ्लेक्शन और स्पिरिचुअलिटी के इम्पोर्टेंस की याद दिलाती है। सिक्किम की हेरिटेज को अप्रिशिएट करने का बेस्ट तरीका है उसकी ब्यूटी के साथ उसकी ट्रेडिशंस को भी समझना। तो सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो, रेनबो के साथ है लाइफ है रंगीन।

0: 101.9.
1: Welcome back, listener. The time is passing in the studio clock by 12:24. Right. Listeners, आज हम 15 अक्टूबर को हम याद कर रहे हैं ब्रिटेनियन हिंदी सिनेमा की थिएटर एक्टर डायरेक्टर ओम शिवपुरी जी को। ओम शिवपुरी इंडियन थिएटर और हिंदी सिनेमा का एक रेस्पेक्टेड नाम थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग जर्नी में कई मेमोरेबल कैरेक्टर रोल्स निभाए और थिएटर को भी अपना इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़े रहे और दिल्ली में दिसंतर थिएटर ग्रुप की फाउंडेशन में भी उनका इम्पोर्टेंट रोल था। हिंदी फिल्म्स में उन्होंने सीरियस कैरेक्टर से लेकर नेगेटिव रोल्स तक अपनी वर्सटैलिटी दिखाई। उनकी परफॉर्मेंसेस ने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी कहानी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाया। दोस्तों, सिनेमा में हर कैरेक्टर को लीड रोल मिलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सपोर्टिंग रोल्स ही फिल्म की स्टोरी को डेप्थ और स्ट्रेंथ देती है। ओम शिवपुरी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें याद दिलाता है कि थिएटर और सिनेमा दोनों में डेडिकेशन, डिसिप्लिन और टैलेंट की अपनी एक स्पेशल जगह होती है। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर लेट्स रिमेम्बर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन थिएटर एंड हिंदी सिनेमा विद रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन।

101.9। वेलकम बैक लिसनर्स। अब बात करते हैं एक और मेमोरेबल एक्टर की, पंकज धीर जी, जिन्होंने टेलीविजन सीरियल महाभारत में कर्ण का आइकॉनिक रोल के लिए याद किया जाता है। कर्ण का कैरेक्टर फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट और डेस्टिनी के बीच एक इमोशनल स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। पंकज धीर जी ने अपनी डिग्निफाइड पर्सनालिटी और पावरफुल परफॉर्मेंस से इस कैरेक्टर को जनरेशंस के लिए मेमोरेबल बना दिया। दोस्तों, कुछ कैरेक्टर्स सिर्फ टेलीविजन पर नहीं रहते बल्कि ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बना लेती हैं। पंकज धीर जी का कर्ण का भी ऐसा ही कैरेक्टर था। आज उन्हें याद करते हुए लेट्स पे ट्रिब्यूट टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन टेलीविजन एंड सिनेमा। उनकी परफॉर्मेंसेस और उनका अनफॉरगेटेबल पोर्ट्रियल ऑफ कर्ण हमेशा फैंस की यादों में जिंदा रहेगा। मे बोथ दीज टैलेंटेड आर्टिस्ट कंटिन्यू टू बी रिमेम्बर फॉर द लेगेसी दे लेफ्ट बिहाइंड। सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9।

वेल दैट वॉज एन अमेजिंग सॉन्ग राइट. जैसे कि हम दोस्तों 90s एरास के गाने बहुत अमेजिंग थे होते थे. एंड यस उस टाइम में काफ़ी ब्यूटिफुल फिल्म्स भी रिलीज हुई थी अक्टूबर में. जैसे कि दिल, इट वॉज एन मैसिव फिनोमिनन इन अक्टूबर. एंड जैसे कि आमिर खान और माधुरी दीक्षित जी की एक्टिंग वॉज अमेजिंग. एंड लाइक आशिकी, आशिकी वॉज स्टिल ड्राइविंग द नेशन क्रेजी इन अक्टूबर. और बात करें घायल फिल्म की, विच वॉज नेशनल अवार्ड विनिंग. दिस फिल्म्स ऑलवेज रिमेन्स इन द हार्ट ऑफ ऑडियंसिस राइट. तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे अभिज्ञा.

1,40,000 registered school children in the pre-internet era. He also helped establish rural radio science clubs and radio schools to promote science education. है ना, बहुत बढ़िया बात. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रैक की ओर. आफ्टर दिस एड सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो. रेनबो के साथ है, लाइफ है रंगी.

सीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार दोस्तों, एक टाइम था जब स्मार्टफोन्स, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब लेसन्स ये कुछ भी अवेलेबल नहीं थे। रेडियो वॉज हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट साइंस, डिस्कवर न्यू आइडियाज एंड एक्सपैंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। और यही है एक ट्रू इनोवेटर की पहचान। दे डोंट सिंपली आस्क व्हाट कैन आई डू विद द टेक्नोलॉजी, दे आस्क हाउ कैन आई यूज दिस टेक्नोलॉजी टू मेक पीपल्स लाइफ बेटर। Dr. Sridhar also contributed to educational broadcasting initiatives such as Gyan Darshan, Gyan Vani, helping make education accessible through electronic media. Dosto, innovation ka matlab hamesha koi nayi machine invent karna nahi hota. Sometimes, it means using an existing idea in a way that changes thousands of lives. एंड ये जर्नी वो प्रूव करता है कि नॉलेज बिकम्स ट्रूली वैल्यूबल व्हेन वी शेयर इट विद अदर्स। एंड नाउ लिसनर्स, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारी इंडियन रेडियो फैटर्निटी इन 2026 डॉक्टर आर श्रीधर रामामूर्ति वॉज नेम्ड एज अ रिसिपियंट ऑफ द प्रेस्टिजियस पद्मश्री, इंडियाज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। द ऑनर रिकॉग्नाइजेस हिज मोर 5 decades of work in broadcasting, educational media and community radio. Yes, keep listening. Akashvani 101.9 FM Rainbow.

101.9। वेलकम बैक दोस्तों, उनके अचीवमेंट सिर्फ एक अवार्ड तक लिमिटेड नहीं थी। His journey has included working with Akashvani and Doordarshan, contributing to educational broadcasting, supporting community radio initiatives, and continue to explore new possibilities for audio and podcasting. बहुत सारी डिकेड्स के बाद भी उन्होंने एडवोकेट एवोल्यूशन ऑफ द रेडियो एंड नए तरीके भी ढूंढे हैं ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए। As an RJ, I find his journey very inspiring because it reminds all of us in broadcasting that our voices can do much more than entertain. They can educate, inspire, preserve culture and bring communities together. तो दोस्तों, आज हमने ढेर सारी बातें की है, बहुत सारे इंस्पिरेशनल एंड थॉटफुल लेसन भी सीखे हैं, कई सारे अमेजिंग गाने भी सुने। तो आज के लिए मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, पर आप लोग कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए, क्योंकि अगले आज ये आपसे जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर।
1: सजग भारत, जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: FM Rainbow 101.9.
1: ECP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: స్టూడియో క్లబ్ సమయం 4:03 అయింది. ఇప్పుడు వినండి సందేశ్ టు సోల్జర్స్.
1: शाहिद और आज के हमारे संदेश टू सोल्जर्स के बहुत ही विशेष अतिथि हैं कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन, और हम उनका स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे इस खास शो में. कर्नल कंवर भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर.
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
1: सर. बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय निकाला और आज आप हमारे शो में शामिल हुए हैं. हम अपने लिसनर्स को बता दें कि आप हमारा शो लाइव सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में, और आप हमें मैसेज करके कर्नल कंवर भारद्वाज से सवाल कर सकते हैं, कुछ बात करना चाहे तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर. और हमारे साथ आज के बहुत ही विशेष अतिथि जिन्होंने देश को देश की सेवा में दो पीढ़ियों से ज्यादा की सर्विस दी है डिफेंस सर्विसेज में. कमीशन किए गए कर्नल कंवर भारद्वाज इंडियन आर्मी में 11 जून 1967 को राजपुताना राइफल्स इन्फेंट्री में. 1971 वॉर वेटरन हैं कर्नल कंवर भारद्वाज. 1971 वॉर में उन्होंने कंपनी कमांडर के तौर पर लड़ाई लड़ी. उसके बाद उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, और किस तरह से शुरुआत हुई वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है. हम बातचीत शुरू करते हैं हमारे आज के खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज से. सर, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से हुई शुरुआत आपका, या परिवार में कोई बैकग्राउंड नहीं था आर्मी से, आप किस तरह से जुड़े, कैसे वो जज्बा आपके दिल में आया.
2: मैं अपने बारे में बताने के साथ ये भी कहूँगा कि मैं एक बहुत ही जमींदार फैमिली का तीसरे नंबर का बेटा था
1: जी,
2: और मेरे पिताजी जो थे वो एक

0: फार्मर थे, और उसमें जो मैंने मैट्रिकुलेशन किया वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके,
1: ओके
0: और आर्मी ज्वाइन की एज ए जॉन,
1: अच्छा
0: और टेक्निकल रेजिमेंट सिग्नल्स के अंदर
1: जी
0: मेरा एंट्री हुआ व्हेन मेरी उम्र केवल 17 साल 216 दिन की थी,
1: अच्छा
0: और उस समय हम सिग्नल्स के अंदर रिक्रूट भर्ती किए गए थे।
1: जी
0: और वहाँ भर्ती होने के बाद में ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म किया, और उसके बाद में हम जालंधर पोस्टिंग हो गए एज ए जॉन।
1: अच्छा
0: ये फौज के बारे में मोटिवेशन इतना कुछ नहीं था, एक
1: जी
0: जमींदार फैमिली से
1: जी
0: होने के नाते कॉलेज से भागकर, फर्स्ट
1: अच्छा
0: ईयर कॉलेज से भागकर हम आर्मी के अंदर ज्वाइन किया,
1: जी
0: और अपना मोटिवेशन यही था कि हम आर्मी के अंदर
1: जी
0: किस प्रकार से नौकरी करें।
1: जी सर, आप एक जमींदार, एक किसान परिवार से आते हैं, आपके पिताजी किसान थे, तो आपका किस तरीके से वो परिवेश रहा, और अचानक फिर ऐसे आपके दिल में जो जज्बा आया फौज ज्वाइन करने के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए, तो ये कहाँ से मोटिवेशन, जैसे आपने बताया कि हमने
0: ये
1: इस तरह
0: बहुत
1: शुरू
0: ही एक अजीब सी बात है कि
1: जी
0: ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इतनी जल्दी नौकरी करूं,
1: अच्छा
0: बट जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ ही रहा था गवर्नमेंट स्कूल गढ़ी अरसरू में,
1: जी
0: उस समय मेरा इंगेजमेंट हो गया,
1: अच्छा
0: और इंगेजमेंट से डर के शादी नहीं करें अभी,
1: अच्छा
0: कॉलेज से भाग करके और बगैर बताए पेरेंट्स को हमने आर्मी ज्वाइन कर ली।
1: अरे वाह
0: और आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब पता पड़ा हमारे पिताजी को कि
1: जी,
0: हम
1: तो बहुत
0: फौज
1: नाराज
0: में जा
1: होंगे
0: रहे हैं, तो पूरा परिवार बहुत नाराज़ था,
1: जी
0: और पिताजी ने आकर के काफ़ी कुछ कोशिश की, क्योंकि जो मेरी वाइफ जो शिक्षा भारद्वाज
1: जी
0: जो अभी नहीं है,
1: जी
0: वो उनके ताऊ जी वहाँ पे हेड क्लर्क पोस्टेड थे
1: अच्छा
0: सोल्जर बोर्ड में, और गुड़गांव में जब मैं भर्ती हुआ
1: जी
0: तो मेरे फादर जो है वो उनके ताऊ जी के पास पहुंच गए और मेरी कंप्लेंट की कि भर्ती होके जा रहा है, इसकी शादी वगैरह अरेंज कर रहे थे तो इसको रोको। तो मैंने
1: अच्छा
0: बड़े रौब से बगैर ज़्यादा कुछ बोलते हुए अपने
1: जी
0: फादर का बहुत रिस्पेक्ट करता था, और गर्दन
1: जी
0: नीचे करके और अपने जो वुड बी फादर इन लॉ को भी ये बोल दिया कि जी फौज में जाना मेरे को अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू गो एंड ज्वाइन द आर्मी ओनली।
1: जी तो
0: तो
1: आप
0: मैं
1: डिटरमिन्ड रहे, आप मजबूत रहे कि मुझे तो आर्मी ज्वाइन करनी ही है।
0: एक्चुअली ये था कि 10th करके अगर कॉलेज में आगे नहीं पढ़ना है,
1: जी
0: और जोश था कि आर्मी ज्वाइन करें, क्योंकि
1: जी
0: आर्मी उस टाइम पे नंबर 1 प्रोफेशन होता था आज के ज़माने को ना कहते हुए,
1: जी
0: एंड आई हैड द इंसिस्टिंग टू माई सेल्फ इन दैट फीलिंग कि
1: जी
0: इससे बढ़िया नौकरी कुछ नहीं हो सकती।
1: अच्छा सर, वो कौन सा साल था जब आपने ज्वाइन किया?
0: इट वॉज 1961
1: 61
0: या एंड आई वॉज पोस्टेड रादर फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर, और
1: अच्छा
0: वहाँ पे इतना ज़्यादा तगड़ा हुआ, और
1: अच्छा
0: जो मेरे वुड बी फादर इन लॉ थे उसने जाते समय वार्निंग दे दी थी कि अगर जा ही रहे हो बगैर हमारे बताए
1: मर्जी के
0: मर्जी के
1: जी
0: तो वहाँ जा कर के फिर ये मत बोलना कि आप हमारा नाम कटवा
1: अच्छा
0: दो।
1: अच्छा अच्छा मतलब ऐसे नहीं कि आप पीछे हट जाएं
0: और जिस काम से मैं भागा था,
1: जी
0: जिससे शादी ना करने के डिले करने
1: जी
0: की शादी से भागा था, जब मैं रिक्रूट ही ट्रेनिंग कर रहा था
1: जी
0: तो मेरे को 10 दिन की छुट्टी ला बुला करके, और मेरी शादी भी हो गई
1: अच्छा
0: व्हेन शी वॉज 14 ईयर्स एंड आई वॉज 18 ईयर्स ओनली,
1: ओके
0: बिकॉज आई ज्वाइन द आर्मी व्हेन माई एज वॉज ओनली 17 ईयर 216 डेज।
1: अच्छा आप पूरे 18 के भी तब तक नहीं हुए थे,
0: जी
1: और आपने अपनी सर्विस जो है नेशन के लिए, आर्मी के लिए, फोर्स के लिए देना शुरू कर दिया था
0: जी
1: जी। तो सर शुरुआत किस तरह से हुई? आप इन्फेंट्री में रहे, राजपूताना राइफल्स में रहे, तो यही शुरुआत थी, या इससे पहले भी आपने किसी और जगह भी काम किया आर्मी में?
0: एक्चुअली जब सिग्नल्स के अंदर हम
1: सिग्नल्स में
0: जवान थे
1: जी
0: तो वहाँ हमारी पोस्टिंग हो गई ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म करने के बाद में
1: अच्छा
0: जालंधर,
1: ठीक है
0: जालंधर अलर्न कोर सिग्नल रेजिमेंट, उसके अंदर पोस्टिंग हो गई।
1: जी
0: एंड व्हेन आई वाज देयर 1962 का चाइना के साथ वार
1: अच्छा
0: हुआ,
1: जी
0: सो
1: जी
0: दैट टाइम हम जवान थे,
1: अच्छा
0: तो पूरी रेजिमेंट के अंदर काफ़ी
1: जी
0: तहलका मचा हुआ था, और हम एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग जवान बन गए थे वहाँ पे। और 62 का ऑपरेशन के बाद में
1: जी
0: इमरजेंसी कमीशन स्टार्ट हुआ,
1: अच्छा
0: तो इमरजेंसी कमीशन के दौरान
1: जी
0: मेरे को स्पेशली एक अच्छा जवान सेलेक्ट करके
1: अच्छा
0: और कमांडिंग ऑफिसर के साथ में कुछ एक कैंडिडेट थे जिनका इंटरव्यू कैंडिडेट करके और कर्नल साहब को जो हमारे सीईओ थे उस समय
1: जी.
0: उनको स्क्रीन आउट करना था कि इनको हम आगे एसएसबी के लिए रिकमेंड करें.
1: अच्छा
0: सो वो बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट.

0: है विच यू वुड लाइक टू नो
1: जरूर सर, जरूर हमारे
0: कि
1: लिसनर्स।
0: मेरे को ये ड्यूटी दी गई कि सबको बारी बारी कमांडिंग ऑफिसर साहब के अंदर ऑफिस में भेजते
1: ऑफिस में भेजा
0: रहिए
1: जाए
0: और
1: जी
0: इनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके एंड डू दैट दैट फुल।
1: जी
0: सो सीओ साहब 1:30 बजे लंच ब्रेक के लिए घर चले गए और जाते समय बोल गए कि मैं 3 बजे वापस आऊँगा और 3 बजे के बाद में बाकी कैंडिडेट का हम इंटरव्यू करेंगे।
1: अच्छा
0: 3 बजे वो सही डॉट 3 वापस आ गए
1: जी
0: तो फर्स्ट कैंडिडेट को हमने बोला कि आप अंदर जाइए। तो वो अंदर गए तो उन्होंने जाते ही अंदर जाते ही बोला गुड मॉर्निंग सर।
1: अच्छा
0: बोल तो सीओ आस्क्ड हिम कि व्हाट इज द टाइम 3:05 सर।
1: अच्छा
0: तो व्हाई आर यू विशिंग मी गुड मॉर्निंग सर। तो ही सेड के सर वी हैव बीन टोल्ड इन द सिविल इफ यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम यू मस्ट
1: अच्छा
0: विश हिम गुड मॉर्निंग। बोलता है इफ देर इज एनी हार्म इफ यू विश मी गुड आफ्टरनून और गुड गुड
1: हाँ
0: इवनिंग
1: जी
0: बट सर वी हैव बीन टोल्ड द सिविल लाइक दैट। ही पुट अप सन अदर क्वेश्चन टू हिम ऑल्सो
1: जी
0: सो ही वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई इट प्रॉपरली। देन ही कॉल्ड फॉर मी
1: जी
0: आई इंटर्ड एंड सलूटेड हिम एंड ही पुट अप ऑल दोज क्वेश्चन टू मी एंड स्ट्रेट वे जो ही वो जैसे सवाल सारे मैं
1: जी
0: फटाफट जवाब दिया
1: जी
0: तो कर्नल साहब ने मेरे को तो चेयर ऑफर कर दिया और उसको बोला थैंक यू
1: अच्छा
0: कैरी ऑन
1: और आपको
0: एंड
1: सिलेक्ट कर लिया
0: ही इंसिस्टेड मी और रादर मोटिवेटेड मी
1: जी।
0: यू ट्राई फॉर कमीशन व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर कमीशन। आई सेड सर आई एम नॉट ग्रेजुएट आई एम मेट्रिकुलेट ओनली आई एम नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन टू अप्लाई फॉर
1: फुलफिल
0: द
1: कर
0: इमरजेंसी
1: जी
0: कमीशन।
1: क्राइटेरिया
0: एंड
1: जी
0: ही टोल्ड मी दैट ओके क्राइटेरिया नहीं है अभी तो आप ACC के अप्लाई करिए
1: जी
0: यू अप्लाई फॉर आर्मी कैडेट कॉलेज एंड आई सी दैट यू गेट सेलेक्टेड एंड माइंड यू आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक। देर
1: अच्छा
0: वॉज 63 कैंडिडेट फ्रॉम माई रेजिमेंट दोज हु अपियर फॉर इनिशियल आर्मी कैडेट कॉलेज
1: जी
0: ऑल द टेस्ट एंड ऑल दैट आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट सेलेक्टेड आउट ऑफ 3
1: अच्छा
0: कैंडिडेट्स आउट ऑफ
1: 63 में से
0: 63
1: आप जी।
0: जो कि SSB तक पहुंचे।
1: तो ये मोटिवेशन सर आपको
0: ये
1: सीओ साहब से
0: मोटिवेशन
1: मिला
0: मोटिवेशन दैट
1: जी
0: वे आई गॉट मोटिवेटेड
1: जी
0: एंड आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक। आई हैड वेरी गुड कैरियर
1: बिल्कुल
0: थ्रू आउट माई आर्मी कैडेट कॉलेज देन IMA एंड व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम देयर यू यू आस्क मी दैट हाउ यू गॉट इन टू इन्फेंट्री
1: बिल्कुल
0: दैट टू
1: जी
0: राजपूत राइफल।
1: जी
0: सो ऑन दैट आई जस्ट टेल यू कि वहां पे जो मेरे कंपनी कमांडर थे
1: जी
0: IMA के अंदर
1: जी
0: वो राजपूतान राइफल से मेजर शर्मा साहब थे जो
1: अच्छा
0: कि वार वेटरन थे और VRC डेकोरेट थे।
1: अच्छा
0: सो आई वॉज वेरी आउटस्टैंडिंग माइंड यू आई मस्ट बी प्राउड ऑफ टेलिंग यू ऑल्सो
1: बिल्कुल
0: कि
1: सर,
0: आई हैव प्लेड वॉलीबॉल नेशनल लेवल एंड
1: नेशनल लेवल पर।
0: बास्केटबॉल स्टेप डाउन एंड
1: अच्छा
0: आई वॉज गुड बॉक्सर एंड क्रॉस कंट्री रनर ऑफ द टॉप क्लास
1: क्या बात है
0: इन
1: सर,
0: अकेडमी
1: वॉलीबॉल,
0: सो
1: बॉक्सिंग और रनिंग,
0: और रनिंग
1: क्या बात है,
0: एंड वॉलीबॉल नेशनल लेवल इज
1: नेशनल लेवल पर
0: समथिंग
1: आपने
0: वेरी।
1: वॉलीबॉल वॉलीबॉल भी खेली।
0: सो ही वॉज सो इम्प्रेस्ड एंड ही वॉन्टेड मी टू गो टू हिज रेजिमेंट ओनली एंड
1: अच्छा
0: दैट्स वाई वेयर इज माई CO दैट टाइम हु गॉट मी सेलेक्टेड फॉर ACC
1: जी
0: ही
1: जी
0: वॉन्टेड मी दैट आई शुड ज्वाइन सिग्नल्स बट आई
1: अच्छा
0: गॉट इन टू राजपूताना राइफल्स एंड आई वॉज माई माइटी हैप्पी टू बी विद द राजपूताना
1: तो सर
0: राइफल्स।
1: आपको ज्यादा मजा किसमें आया, मतलब आपको लगता है कि राजपूताना राइफल्स ही आपके लिए जो है एक ड्रीम था
0: देखिए ऐसा मैं बताएं
1: जी?
0: कि आर्मी ज्वाइन करना एज ए मैटर ऑफ प्राइड एंड
1: बिल्कुल
0: टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर एज ए डबल मैटर ऑफ प्राइड एंड इफ यू गेट इन टू इन्फेंट्री
1: जी
0: नथिंग लाइक दैट
1: अच्छा
0: एंड अमोंग इन्फेंट्री राजपूतारा राइफल्स इज
1: टॉप,
0: अ टॉप
1: अच्छा
0: एंड आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ दिस आई गॉट इन टू राजपूताना राइफल्स।
1: क्या बात है सर,
0: यू नो माई एल्डर सन इज ऑल्सो फ्रॉम राजपूताना राइफल्स
1: यस सर
0: एंड
1: जी
0: दैट बॉय ऑल्सो बिकॉज राजपूताना राइफल इज वन ऑफ द वेरी गुड रेजिमेंट
1: जी
0: एंड ही इज द वन।
1: जी क्या बात है सर। हम आगे सर आपसे बात करेंगे और हम 62 जैसे आपने बताया, हम 71 की बात करेंगे क्योंकि आप वॉर वेटरन रहे 1971 वॉर के, तो हम उस पर भी बात करेंगे और कुछ आपसे इंटरेस्टिंग कहानियां भी जानना चाहेंगे। तो आगे बढ़ेंगे हम और अपने लिसनर से बताना चाहेंगे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमारे आज के हमारे खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं और 1971 वॉर वेटरन हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और हमें आप सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आप बने रहे हमारे साथ, यह है देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, आप सुन रहे हैं शाही के साथ।

0: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और आज हमारे हैं खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे इस शो में।
1: वेलकम, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया आज हमारे साथ। आप जो बहुत ही इंटरेस्टिंग

0: बातें हमें बता रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अनोखी भी हैं और बहुत ही खुशी देने वाली भी हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आपने बचपन से ही किस तरीके से आपके मन में था कि आपको फौज में भर्ती होना है और आपने किसी की परवाह नहीं की और आपने वो मकाम बनाया जो हर इंसान के लिए, सर मैं समझता हूँ कि आसान नहीं होता, जाहिर है बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, तो वही आपने अपनी लाइफ में वो किया, अपने करियर में आपने जो अचीवमेंट्स हासिल की, वो जो मकाम आपने बनाया, तो इसके बारे में आपके कुछ, सर कुछ शब्द मैं चाहूंगा कि आप कहना चाहेंगे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं?
1: आई थिंक ऊपर वाले ने जो दिया है
0: जी
1: जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे भी बहुत अच्छा मिला है। और जो 71 वॉर के बारे में
0: जी
1: मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं बड़ा यंग ऑफिसर था एंड आई वॉज मेजर रैंक था मेरे पास में,
0: जी
1: आई वॉज कमांडिंग वन ऑफ द कंपनी ऑफ 9th बटालियन।

0: तो इसके बारे में आपके कुछ सर कुछ शब्द मैं चाहूंगा कि आप कहना चाहेंगे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं?
1: थिंक ऊपर वाले ने जो दिया है,
0: जी
1: जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे भी बहुत अच्छा मिला है। और जो 71 वार के बारे में
0: जी बिल्कुल
1: मेरा
0: सर,
1: इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो, मैं बड़ा यंग ऑफिसर था
0: उस
1: एंड आई
0: जमाने
1: वाज
0: में
1: मेजर
0: बिल्कुल
1: रैंक था मेरे पास में।
0: जी
1: आई वाज कमांडिंग वन ऑफ द कंपनी ऑफ 9th बटालियन राजपूत राइफल
0: जी
1: इन पुंछ सेक्टर।
0: पूंछ सेक्टर में जी। तो सर 1971 वॉर वेटरन हैं आप, तो उसके सर हम उस वॉर के बारे में जानना चाहेंगे जिसका आप हिस्सा रहे हैं, तो वो किस तरीके का सर दौर था, वो क्या हालात थे, और जब वो जंग थी तो उस पर आपका और जो जो नेशन उस वक्त जो देश पर में चल रहा था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: देखिए उस समय जो हालात थी,
0: जी
1: मुक्ति वाहिनी वगैरह बहुत पहले से मूवमेंट शुरू हो चुके थे
0: जी
1: ईस्टर्न सेक्टर में, बट नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर पुंछ एरिया स्पेशली उस
0: जी
1: साइड के अंदर कोई ज़्यादा इतनी चहल पहल नहीं थी, लड़ाई की
0: जी
1: तैयारियां नहीं थी। लेकिन लकली वी हैड ए जनरल ड्यू कमांडर मेजर जनरल कुंदन सिंह।
0: जी
1: ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम राजपूत राइफल्स एंड ही हैपन टू बी ए वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग जनरल हु रिटायर्ड एज MS लेफ्टिनेंट जनरल। ही
0: जी
1: वॉज द वन हु पुल्ड अप द कम्प्लीट डिवीजन एंड वी वर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी और एनी वॉर टाइप थिंग एट
0: जी
1: दैट टाइम।
0: जी
1: सो ही वॉज द वन एंड आई वॉज विद द ब्रावो कंपनी कमांडर
0: अच्छा
1: इन पुंछ सेक्टर वेयर पुंछ इज अदर साइड ऑफ द पुंछ रिवर एंड
0: ठीक
1: वी
0: है,
1: वर द अदर साइड ऑफ द दिस साइड ऑफ द पुंछ रिवर
0: अच्छा
1: एंड
0: आप
1: अदर
0: उस
1: साइड
0: तरफ थे,
1: हम इस साइड में थे।
0: अच्छा
1: और पुंछ के थोड़ा सा आगे चलने के बाद में
0: जी
1: पाकिस्तान बॉर्डर स्टार्ट होता है
0: अच्छा
1: एंड आई वॉज फेसिंग द पाकिस्तानीज अपोजिट माई पोस्ट अक्रॉस द रिवर पुंछ
0: बिल्कुल,
1: रिवर
0: मतलब आमने सामने की,
1: आमने सामने थे
0: बिल्कुल
1: और उनके पास में वहाँ पे RCL गन लगी हुई थी
0: अच्छा
1: और
0: RCL
1: MMG लगी हुई थी।
0: ओके
1: वो डायरेक्टली हमारे अंडर व्यू थी, दे कुड फायर एट अस एंड वी कुड फायर एट देम।
0: अच्छा बिल्कुल आमने सामने
1: आमने
0: आपकी गन्स लगी
1: सामने
0: हुई थी,
1: फ्रॉम दैट टॉप एंड आई हैड यू नो कंपनी वॉर डिप्लॉयड ऑन 3 पोस्ट
0: अच्छा
1: एंड आई वॉज ऑन द मिडिल पोस्ट। हम मिडिल पोस्ट जो पहाड़ी का था
0: जी
1: उससे हम पूरी कंपनी को अपना कंट्रोल करते थे
0: ठीक है
1: और सामने से फायर वगैरह आते थे। 4
0: अच्छा
1: तारीख दिसंबर 4th ऑफ दिसंबर
0: जी
1: फायरिंग स्टार्ट हो गया। तो
0: ठीक
1: फायरिंग स्टार्ट होने के बाद में पूरी रात हम लगभग लड़ाई लड़ते रहे और जो
0: जी
1: ही फायरिंग स्टार्ट हुआ तो माई एक्शन वॉज कि मैंने पूरे जवानों से मिलकर उनको हौसला बढ़ाना है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली व्हेन द फायरिंग वॉज गोइंग ऑन आई नेवर
0: अच्छा
1: बॉदर्ड। फर्स्ट आई वेंट टू अदर पहाड़ी अदर जो कि
0: अच्छा
1: जहाँ मेरी पिकेट थी
0: जी
1: ऑलमोस्ट अबाउट 1 किलोमीटर अदर साइड
0: अच्छा
1: ऑन द अपील ऑफ द माउंटेन
0: अच्छा
1: एंड आई मेट ऑल द पर्सनल एंड जवानों
0: आपके
1: का
0: आपके जवान जी
1: जवानों का हौसला
0: हौसला
1: बढ़ाते
0: बढ़ाने के
1: बढ़ाते
0: लिए जी
1: देन आई वेंट टू द अदर पिकेट एंड देन टू माई ओन पिकेट एंड कंप्लीट नाइट आई वॉज एक्टिव विद दैट ट्रीटिंग द
0: अच्छा ये
1: पीपल एंड
0: मूवमेंट
1: नेवर
0: आपकी
1: वॉज
0: पूरी रात रही
1: पूरी रात रही
0: जी,
1: एंड
0: आप
1: वेन आई
0: मोटिवेट करते रहे, हौसला
1: वेन
0: बढ़ाते रहे,
1: आई यू नो वी हैव द कमांड पोस्ट
0: अच्छा
1: एंड कमांड पोस्ट इज सॉर्ट ऑफ ए वेरी वेरी सॉलिड बंकर
0: बिल्कुल
1: फ्रॉम वेयर यू कुड ऑब्जर्व एंड देन डायरेक्ट द फायरिंग एंड अदर थिंग ऑल्सो एंड कमांड योर कंपनी ऑल्सो।
0: बिल्कुल
1: सो फ्रॉम द कमांड पोस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग इट
0: जी
1: वॉज गोइंग टू बी डे लाइट आई गॉट आउट फ्रॉम माई कमांड पोस्ट एंड वॉज गोइंग फॉर ए पी प्लेस
0: जी
1: टॉयलेट
0: जी
1: एंड टॉयलेट वॉज यू नो ऑल टेम्परेरी
0: जी बिल्कुल
1: टिन से टिन के ना जो टार्मेक के टिन होते
0: जी
1: हैं ड्रम
0: जी
1: उसको
0: ठीक
1: कट
0: है,
1: करके एक बड़े से पत्थर के साथ में
0: उसको बनाया
1: वो
0: जाता है
1: बनाया गया था
0: ठीक है
1: टेम्परेरी टाइप।
0: जी
1: सो आई वॉज गोइंग टू दैट वन। सो बंकर टू बंकर और वी हैव द कम्युनिकेशन ट्रेंचेज।
0: अच्छा
1: कम्युनिकेशन ट्रेंचेज आर द यू नो सॉर्ट ऑफ से अबाउट 5.5 6 फीट डीप फ्रॉम
0: अच्छा
1: थ्रू विच यू कैन
0: अच्छा
1: वॉक
0: उसके अच्छा उसके
1: उसके
0: बीच में से आपको गुजर के जाना होता है, अच्छा
1: हाँ चल के जाना होता है।
0: जी
1: सो व्हेन आई वॉज वॉकिंग टू टॉयलेट एंड देन क्लाइम अप एंड गेट आउट फ्रॉम दैट वन
0: जी
1: दैट टाइम देर वॉज ए साउंड ऑफ ए RCL फायर।
0: अच्छा
1: व्हेन द RCL फायर केम तो माई ऑपरेटर वॉज विद मी
0: जी
1: एंड ही वॉज कमिंग आउट विद मी कि मेजर साहब कहाँ जा रहे हैं।
0: जी
1: तो वो मेरे साथ जो ही निकला उसने सुना कि अब फायर हो गया RCL
0: जी
1: और इसने मेरा हाथ पकड़ के और पीछे गिरा दिया
0: अच्छा
1: और बोला अरे सब मरोगे।

0: us and we are firing that side.
1: जी सर, मैं एक चीज यहाँ पर जानना चाहूंगा, जब ये सिचुएशन आप देख रहे थे अपने सामने, तो वो क्या फीलिंग्स होती हैं आप फायरिंग के बीच में जब जा रहे हैं, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और वो वॉर का समय है, तो क्या वो जो सिचुएशन होती है उसको किस तरह से फेस करते हैं,
0: जो फीलिंग होती है, जो फीलिंग होती है
1: जी,
0: वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है. हम तो इतने जोश में होते हैं कि कुछ हमको लगता ही नहीं है. हम तो को पता है हम
1: जी
0: जीतेंगे, हम मारेंगे, हम अपने जो भी हमको ऑब्जेक्टिव मिला है, जो टास्क मिला है उसको पूरा करेंगे. अभी
1: जी
0: बताता हूँ आगे क्या क्या
1: जी
0: हुआ.
1: जी
0: तो BM साहब ने बोला, और AT वाले, मैं उनको बोलता हूँ
1: जी
0: कि आप अपना कंपनी को लेके क्रॉस करिए
1: जी
0: और आप पहुँचिए जल्दी से. सो यू नो क्लाइम वॉज क्वाइट बिग. वेन द फायरिंग स्टॉप्ड
1: अच्छा
0: आई मूव्ड माई कंपनी क्रॉस द झूला ब्रिज, देन स्टार्ट क्लाइंबिंग अप. सो क्लाइंबिंग अप ऑल दैट, तो मल्होत्रा प्लाटून वॉज लीडिंग एंड वी कम इन सिंगल लाइन.
1: अच्छा
0: ट्रैक के ऊपर जैसे पहाड़ों के चढ़ते हैं
1: जी
0: तो सिंगल लाइन पे जा रहे थे. एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड इट वॉज गोइंग टू बी अर्ली मॉर्निंग, बट
1: अच्छा,
0: बिफोर फर्स्ट लाइट आई वॉज टू
1: तो
0: रीच,
1: पूरी रात को आपको चढ़ाई चढ़नी थी
0: बिफोर फर्स्ट लाइट आई वॉज
1: जी.
0: टू डू द ऑपरेशन ऑल्सो. दैट वॉज माई टास्क,
1: यानी कि
0: बिकॉज
1: आप
0: इफ इट वॉज द
1: जी
0: डे लाइट देन आई वुड बी एबल टू डू द नीडफुल.
1: बिल्कुल, तो इतनी
0: सो
1: टफ क्लाइंबिंग के बाद आपको ऑपरेशन भी अपना शुरू करना है.
0: कंप्लीट करना था.
1: बिल्कुल
0: सो वेन वी आर नियरिंग दैट ऑब्जेक्टिव
1: जी
0: बिफोर आई मीन 405,
1: जी
0: द 405 वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ CSIC एंड द CO वॉज देयर
1: अच्छा
0: एंड ऑल दज पीपल दो टेल में जो कंट्रोल करते हैं. तो मेरे को उनको जाके ब्रीफिंग लेना था, उनसे ब्रीफिंग लेने के बाद मेरे को ऑपरेशन करना था.
1: जी
0: सो टाइम वॉज रनिंग शॉर्ट. तो वैन आई फाउंड के आगे से वो बैठ गए सारे,
1: जी
0: तो मैंने जाके जवानों से पूछा क्या हुआ. मोल साहब, मल्होत्रा साहब आगे बैठ गए. आई कॉट ऑल ऑफ मल्होत्रा फ्रॉम हिज नेक एंड आई टोल्ड हिम व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाई यू स्टॉप्ड. बोले सर टायर्ड. मैं कह यू गेट बैक एंड आई वॉज द वन टू लीड द कंपनी रीच टू द 405 FDL
1: जी
0: एंड आई मेट द CO. CO ब्रीफ्ड मी. आई रिक्वेस्टेड CO के सर गिव मी टू स्कॉट दोज हु कैन टेल मी के वेयर फ्रॉम वेयर द फायर इज कमिंग
1: जी
0: सो दैट माई जवान्स कैन अटैक दैट वन एंड आई डोंट सफर कैजुअलिटीज.
1: जी
0: सो वैन ई टोल्ड मे दैट ओके मेजर स्वाइन इज द कंपनी कमांडर एंड यू टेक टू जवान्स फ्रॉम हिम दे विल टेल यू के फ्रॉम वेयर द फायर इज कमिंग. सो वैन आई वेंट टू हिम मेजर स्वाइन सेट नो आई एम ऑलरेडी अंडर द अटैक एंड आई विल नॉट बी एबल टू गिव एनी थिंग. सो आई वॉक बैक टू कमांडिंग ऑफिसर
1: जी
0: ऑफ CSIC एंड आई सेट सर योर कंपनी कमांडर इज नॉट गिविंग मी स्कॉट. देन ही सेट के द टास्क इज गिवन टू यू. मैं कहा वेल कर्नल सो एंड सो यू आर टॉकिंग टू द कंपनी कमांडर ऑफ 9th बटालियन ब्रावो कंपनी एंड आई विल सी दैट माई टास्क इज कंप्लीटेड बिफोर द फर्स्ट लाइट एंड आई एम गोइंग. सो हिज एडजुटेंट केम रनिंग विद मी एंड ही आस्क्ड मेजर स्वाइन टू गिव मी स्कॉर्ट एंड आई पुट अप एन अटैक सॉर्ट ऑफ थिंग आई शुड से के वी हैड टू गो डाउन. We had to go down in the valley
1: Achha.
0: And climb up again and then there was a black rock. From there the MMG and LMG of Pakistanis, they were firing. There were number of mules, those were killed and one of the casualty was there. Other people were also injured in that valley.
1: Ji.
0: But before the first light, I was able to climb up and that the enemy left his that location.
1: अच्छा,
0: leaving some ammunition in one of the
1: and
0: they ran away from there
1: जी.
0: and I joined Major Punjab and Major Padda over there and there were 36 Pakistani those were killed by that company that night itself. So next morning we picked up all those dead bodies of them. I had breakfast, a hot breakfast with Major Punjab and all.
1: Achha.
0: And then next task was given to me to go to help out other company because I was one of the outstanding company commander and outstanding company in the complete division
1: Ji.
0: With my young Jose and all that. And I had stood first in one of the competition which was conducted at the div level at the div headquarters at Rajouri. And
1: Achha.
0: The div commander himself has given this praise of mine.

0: that Brio Company commander, Major K.S. Kamar Bhardwaj, is one of the outstanding officer in this, what do that competition training we had in the Dew Battle School.
1: जी
0: सो दैट वाज द रेपुटेशन ऑफ दैट थिंग
1: बिल्कुल सर, आपकी आपकी वो जोश और जज्बे से भरा हुआ वो जो मोमेंट रहा, उसमें आपने इतना बड़ा उसमें जो है कंट्रीब्यूशन दिया, रोल प्ले किया, तो वो वाकई यादगार है. और जैसे कि आपने बताया कि वो आपकी यादों में जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए, और वो आपके कहीं ना कहीं मस्तिष्क में हमेशा के लिए वो जुड़ा हुआ
0: जो
1: है.
0: अभी
1: वो
0: आप बात कर रहे हैं, अभी वैसा जोश आ रहा है,
1: जोश आ रहा
0: अभी
1: है
0: भी मैं
1: बिल्कुल
0: उसी लड़ाई, उसी पहाड़ और
1: जी
0: उसी
1: जी
0: ब्लैक रॉक जिसको मैंने जाके कैप्चर किया था,
1: कैप्चर किया
0: और
1: बिल्कुल
0: वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि सामने, अभी
1: बिल्कुल
0: जी मैं फिर से
1: सर.
0: जवान हो जाऊं।
1: आप उन यादों में पहुंच गए और मैं आपके साथ उन यादों के साथ ही वहां पर पहुंच गया आपकी बातों में. मुझे महसूस हो रहा था कि मैं वहीं आपके साथ पीछे पीछे चल रहा हूं आपकी बातों में और आपकी यादों में, जहां आप वॉर फ्रंट पर थे और आप दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे.
0: Say it's very nice to talk on that line.
1: जी, और सर इसके बाद भी हम आगे आपसे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि हम और भी चीज़ें आपसे जानें. जैसे आपने 1921 वॉर के आपने जो इंसिडेंट बताए, यादगार कुछ लम्हे आपने शेयर किए हमारे साथ. सर आर्मी सोल्जर्स ने सिर्फ वॉर फ्रंट पर ही नहीं, उसके अलावा अलग अलग स्ट्रीम्स में भी, स्पोर्ट्स में भी गोल्ड और अदर मेडल्स भी जीते हैं. तो आर्मी का कितना बड़ा रोल रहता है, वो हर तरह से, जैसे कि आपने भी कहा आप नेशनल लेवल चैंपियन भी रहे वॉलीबॉल के, बॉक्सर भी आप रहे, आप एक बेहतरीन रनर भी थे. तो आर्मी इन सब चीज़ों में भी आगे रहती है हमेशा, वो वहाँ भी कीर्तिमान स्थापित करती है.
0: राइट फ्रॉम द डे वन
1: जी
0: फिजिकल साइड हैड बीन माय द बेस्ट
1: जी
0: आई से माय स्ट्रेंथ एंड देन माय मोटिवेशन
1: बिल्कुल
0: माय एम
1: फिजिकल स्ट्रेंथ
0: एंड
1: एंड
0: डिटरमिनेशन ऑल दोज थिंग्स टुडे आई कैन से अगेन दैट आई सेल्फ मेड मैन इज
1: जी
0: इन फ्रंट
1: बिल्कुल
0: ऑफ यू.
1: बिल्कुल
0: ठीक है, फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ऑफ ए फार्मर फैमिली एट माई ओन विदाउट एनी सिफारिश और विदाउट एनी रिकमेंडेशन और ब्राइब और एनी थिंग
1: बिल्कुल
0: आई
1: सर
0: आई वॉज द वन टू डू ऑल दिस थिंग
1: बिल्कुल. आपने
0: एंड
1: बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरुआत की और आपने जो अचीवमेंट हासिल करी वो आपकी अपनी अर्न की हुई है, अपनी मेहनत से आपने वो जो एक मकाम हासिल किया.
0: यू विल बी प्राउड टू टेल यू दैट मैंने जब बटेल में
1: जी
0: कदम रखा
1: जी
0: तो अपने आप को बटेल में किसी जवान से कम नहीं समझा. मेरे फिजिकल में इतना दम था
1: जी
0: कि जवान भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, ऑफिसर की तो बात ही छोड़ दीजिए.
1: क्या बात है सर.
0: और मैंने जब बटेल जामनगर आ गई तो उस समय मैंने बटेल में बॉक्सिंग टीम रेज की, वॉलीबॉल टीम रेज की, और वो वॉलीबॉल नेशनल लेवल के प्लेयर बनाए और जो बॉक्सर सेलेक्ट किए थे
1: जी
0: उसमें फर्स्ट टाइम 4 बॉक्सर कमांड लेवल तक बॉक्सिंग किया.
1: क्या बात.
0: एंड माई क्रॉस कंट्री रनिंग और दे लॉट ऑफ अदर कंपटीशन आई यूज टू कैरी इवन द हैवी लोड ऑफ RCL और
1: RCL सर बहुत भारी
0: उसको
1: होती
0: कैरी करना पड़ता है.
1: अच्छा
0: MMG कैरी करनी पड़ती है, 3 पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं.
1: अच्छा उसको
0: तो
1: फिर
0: उसको
1: कंबाइन
0: लेकर के हमको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो ऐसे लंबी दौड़ें लगानी पड़ती है.
1: अच्छा
0: सो आई यूज टू बी लीडिंग अमंग द जवान्स आल्सो विद ऑल दैट एंड माई CO एंड माई 2IC एंड माई बटालियन यूज टू कॉल मी रनिंग हॉर्स.
1: रनिंग हॉर्स
0: रनिंग हॉर्स
1: क्या बात है सर.
0: सो दैट वॉज
1: जी
0: एंड माइंड यू दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो मैरिड एंड फादर ऑफ वन डॉटर देन
1: जी
0: देन सन वॉज ऑल्सो बॉर्न देयर ओनली जामनगर.
1: क्या बात है सर.
0: एंड
1: कर्नल
0: आफ्टर दैट आई हैड गॉन टू द वॉर.
1: जी कर्नल कमर भारद्वाज की बात सुनकर के हम भी जोश से पूरी तरीके से भर गए हैं. और यहां पर मैं जरूर कर्नल कमर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं, 1971 वॉर वेटरन है, हमारे साथ मौजूद है संदेश टू सोल्जर्स में, उनको सर मैं आपको ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ जो आपकी पसंद से मैंने निकाला था. बॉडी ब्यूटीफुल ट्रैक, घर से निकलते ही आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो, आपके अपने रेनबो पर शाहिद के साथ. आप हमें संदेश टू सोल्जर्स में कर्नल कंवर भारद्वाज से आप बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर. और जो मैसेजेस सर आ चुके हैं मैं उनको आपको पढ़कर सुनाऊंगा इस गाने के बाद.

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और आज के हमारे खास मेहमान हैं आज के शो में कर्नल कंवर भारद्वाज सेना मेडल से सम्मानित वॉर वेटरन हमारे साथ आज मौजूद हैं और हम उनकी कहानी सुनकर के खुद भी जोश से अपने आप को भरपूर महसूस कर रहे हैं। सर यहाँ पर मैं आपसे जो भी अभी अब तक मैंने बात की आपके बारे में बात की लेकिन सर एक ऐसी एक शहीद की बात भी मैं यहाँ पर करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी देश के लिए बलिदान दिया जान की आहुति दी और वो थे कैप्टन उमंग भारद्वाज आपके सुपुत्र जिनको उनके साथी प्यार से टाइगर बुलाया करते थे। तीन सक्सेसफुल ऑपरेशंस उन्होंने किए जिन तीन ऑपरेशंस में उन्होंने 15 ड्रेडेड टेररिस्ट को मार गिराया था। उसके बाद चौथा ऑपरेशन था वो एम्बुश था 18 और 19 नवंबर 2002 की मिडिल नाइट में। उस दौरान सर 6 टेररिस्ट मार गिराए गए जिनमें से 2 को अकेले उमंग भारद्वाज ने ही मौत के घाट उतारा और सर उसी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बलिदान दिया शहीद हुए वो और उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी नवाजा गया था। सर वो मोमेंट था एक प्राउड मोमेंट भी था लेकिन बहुत ही यंग एज थी उनकी जब उन्होंने शहादत पाई और टेररिस्ट का मुकाबला करते हुए उनको मार गिराया और अपनी भी जान की आहुति दी देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर कैसे याद करते हैं आप?
1: ओह माय गॉड कैसे याद करते हैं, जैसे उसका नाम था ना उमंग
0: जी,
1: ही वाज ऑलवेज ए लाइव वायर आई टेल यू, हे मेरे लाइफ का वो इतना चाहता बेटा था
0: जी।
1: ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड, ही वाज माय बेस्ट गाइड, ही वाज माय बेस्ट फादर एडवाइजर व्हाट सो यू कॉल बिकॉज इट हैपेंड सो कि वो बड़े भाई से 7 साल छोटा था।
0: अच्छा।
1: जो उस समय मेजर थे और एनएसजी में इंस्ट्रक्टर थे मेजर राजेश भारद्वाज
0: जी
1: और सबसे बड़ी सिस्टर जो है उनकी वो डॉक्टर सविता है।
0: अच्छा।

0: So Umang was full of jokes all the time, and we never wanted to send him to
1: अच्छा
0: army,
1: अच्छा
0: but he got selected for, in return, and then he was to go for SSB. That time also myself और मेरी और उसकी मम्मी
1: जी
0: शिक्षा भारद्वाज ने काफ़ी कोशिश की है कि हम इसको नहीं भेजें, बट उसने हमारे को परस्यू करके और उस
1: जी
0: लाइन पे ले आए कि नहीं, मेरे को फौज
1: आर्मी
0: में
1: ज्वाइन
0: जाना
1: करना है
0: है
1: जी
0: और मैं पहले जाता हूँ SSB में, अभी हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देखते हैं कितना दम है हमारे अंदर. तो वहाँ SSB में गया
1: जी
0: एंड ही गॉट सिलेक्टेड बिकॉज पहले तो बोला था मैं ठीक है 5 साल के लिए रहूँगा, जब
1: जी
0: जाएंगे तो शॉर्ट सर्विस में चले जाएंगे. एंड ही गॉट इन मेरिट एंड ही गॉट रेगुलर
1: जी
0: टू ज्वाइन CSD IAM में ज्वाइन करके,
1: अच्छा
0: तो कमांड डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन को क्लियर करके
1: जी
0: और SSB वगैरह क्लियर करके IAM से पास आउट हो गया. दैट टाइम आई ट्राई टू गेट हिम इन द ASC और AOC.
1: अच्छा
0: सो दैट टाइम आई वेंट टू आर्मी हेडक्वार्टर, वन ऑफ द ऑफिसर ओवर देयर विद माई फ्रेंड, आई हैड गॉन टू हिम एंड आई सेड कि भाई बेटा पास हो रहा है, तो मेजर हुड्डा वॉज देयर.
1: जी
0: ही सेड कि सर उसको हम आर्मड कोर तो और मैकेनाइज इन्फेंट्री नहीं दे पाएंगे, राजदेव दे देते हैं. आई टोल्ड हिम, मैं कह रहा वो मेरे पे एहसान नहीं कर रहे आप,
1: बिल्कुल
0: ठीक है? तो उसको मैं क्या, हमने राजीव नहीं चाहिए उसको, तो राजीव तो उसका बाप है, उसका भाई है, तो वो
1: जी
0: तो उसका पेरेंटल हक है, वो तो मिलेगा.
1: बिल्कुल
0: बट वी वॉन्ट हिम टू गो टू नेवी, व्हाट यू कॉल ASC और AOC, बिकॉज दैट टाइम देर वॉज सम हिच इन माई माइंड एंड माई वाइफ माइंड कि इसको कहीं खतरा है, पता नहीं क्यों ऐसा ही
1: आपको
0: पहले ही
1: जी
0: लग रहा था.
1: लेकिन सर उस उनमें उमंग में आपका वाला ही वो जोश था अपने पिताजी का वो जोश और जज्बा, इसीलिए उनके साथ उनको टाइगर कहकर
0: आई एम
1: पुकारते थे
0: कमिंग टू दैट वन. तो
1: जी
0: उसको व्हेन ही पास्ड आउट एंड व्हेन ही केम टू नो कि ये मेरे को ASC मिली है,
1: जी
0: तो मैंने वो उसको वो फ़ोन पे बड़ी मुश्किल से बातचीत किया एंड ही
1: जी
0: वॉज क्राइंग ऑन फोन कि डैड मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया, वाई यू गॉट मी इन ASC. आई सेड बेटे आपको 3 साल मिलेंगे अटैचमेंट के लिए, उसमें आप हमारी राजरीफ मेरी पलटन के साथ या भैया की पलटन के साथ में आप अटैचमेंट पे आना, अगर आपको राजरीफ ही चाहिए तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, अदरवाइज मैं क्या, राजरिप अगर मिल जाती है या इन्फेंट्री मिल जाती है उसे बाहर निकलना मुश्किल होगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट फ्रॉम देयर एंड वी वॉन्ट टू यूज जज अबाउट यूर सेल्फ.
1: जी
0: ही सेड नथिंग डूइंग एंड मेरे ऊपर कोई मेहरबानी मत करना भी, जहाँ मेरी पोस्टिंग आती है मेरे को जाने दीजिए.
1: अच्छा
0: ही ज्वाइंट 7 जाट एंड 7 जाट के अंदर गया,
1: जी
0: तो ही वॉज पोस्टेड इन महेंद्र सेक्टर एंड नाउ कमिंग टू द ऑपरेशंस. ही
1: अच्छा
0: वॉज सच ए जॉली फेलो एंड फुल ऑफ जोश ऑल द टाइम. ही
1: बिल्कुल
0: कंडक्टेड 3 ऑपरेशन विच यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट,
1: जी
0: और 3 ऑपरेशन के अंदर उसने 5 मार दिए थे.
1: जी
0: इसमें एक इंसिडेंट और बताऊंगा,
1: जी
0: एक DK साहा उसी ए कोर्समेट, ही वॉज ऑल्सो विद द 7 जाट एंड देर इज ए घातक प्लाटून.
1: जी
0: तो दिस बॉय उमंग वॉज डूइंग घातक प्लाटून कमांडर फॉर 1 ईयर एंड ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन ही हैज किल्ड 15 टेररिस्ट
1: जी
0: एंड दीज 4 ऑफिसर दोज हैज ज्वाइन टुगेदर 7 जाट, दे हैड टेकन ए सॉर्ट ऑफ प्लेज दैट जब तक हमारी पलटन यहाँ है और हम यहाँ पर हैं,
1: जी
0: कोई टेररिस्ट हमारे एरिया से
1: जिंदा नहीं जा सकेगा
0: जिंदा नहीं जा सकेगा, अंदर घुस नहीं
1: घुस
0: सकेगा.
1: नहीं सकेगा
0: एंड दैट ही डिड. कैप्टन DK झा सेक्रीफाइस्ड अबाउट 2.5 मंथ्स अर्लियर देन दैट इन दैट सेम एरिया
1: अच्छा
0: एंड उमंग वॉज डूइंग एडजुटेंट. उमंग टोल्ड मी इन द नाइट अराउंड मिड नाइट,
1: जी
0: ही टोल्ड मी दैट डैड DK इज नो मोर. आई से व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, बोलते वो तो छोड़ो मेरे से ऊपर क्या गुजर रही है, वट उसके ब्रदर हैं दिल्ली के अंदर एंड हिज बॉडी विल बी कमिंग टू एयरपोर्ट एंड उसके ब्रदर को आपके उसके साथ भेजना है पटना एंड नेक्स्ट नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 आई विल कॉल यू एंड गिव मी रिपोर्ट. दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ ऑर्डर फॉर माई यंगर सन एंड द ब्रेव बॉय. एंड नेक्स्ट आई डिड ऑल द थिंग्स बिकॉज ही टोल्ड मी कि उसके पास पैसा नहीं होगा, उसकी टिकट वगैरह कर दीजिए और डेड बॉडी के साथ वो उधर से लेके जाएंगे उसे. सो दैट वॉज डन. देन
1: जी
0: उमंग का जो बताया ऑपरेशन,
1: जी
0: ही वॉज डूइंग एडजुटेंट फॉर 2 ईयर्स. ही वॉज पोस्टेड आउट, पोस्टिंग आ चुका था. ही केम ऑन
1: जी
0: 10 डेज लीव एंड 10 डेज लीव के

0: वापस जब वापस गया सो ही रीच देयर ऑन द 17th इवनिंग
1: जी
0: रादर 18th इवनिंग
1: जी 18th और
0: 19th 18th इवनिंग ही रीच देयर
1: जी
0: एंड he was there to have his farewell parties and all that and pick up a trophy and get out from the battalion doing good job that time there was some information on news and all that there are some terrorists those who are crossing the border so he went to the CO and requested him that I want to go for the operation so CO told him no you send somebody you will not go you are already posted out and you have to go that is enough for you so this boy insisted on him and the third time he got ready took some people with him and went for the operation himself then CO warned him that go up to so and so location and conduct the operation
1: Ji.
0: take care apna dhyan rakho
1: Ji.
0: but this boy full of josh and when he went with the ambush party as the ambush commander
1: Ji.
0: he put the ambush over there and allowed the six terrorists to get into the ambush and then he opened the fire first terrorist was killed by his fire then other people personal engaged the ambush terrorist one terrorist was running back towards the dhara one of the dhara is the यूनोखंड टाइप ऑफ मकान पहाड़ों में जिनमें डंगर उंगर बांधते हैं तो उसमें वो शेल्टर लेने के लिए भाग रहा था उमंग रेन पेरल टू हेम एंड शॉट एट हेम ऑल्सो उमंग ऑल्सो गॉट ए शॉट फ्रॉम साइड फ्रॉम दिस फेलो और एनी टेररिस्ट दोज हु आर स्टिल अलाइव
1: आमने सामने की लड़ाई थी उस आमने सामने के साथ
0: फ्रॉम 6 मीटर इटसेल्फ
1: अच्छा
0: ईच अदर शाउटेड एट ईच अदर एंड ही सेड काफिर एंड ऑल दैट ही सेड ब्लडी फूल आई विल किल यू and he shot him down over there and he told his operator ke ramkishan apne CO sahab ko bolo maine apna kaam pura kar diya hai jawan ko fire jari rakhe koi bach ke nahi jana chahiye aur mere shayad kahin lag gayi hai by that time the operator approached him umang was no more
1: acha
0: so
1: to us moment par umang bharadwaj ne shahadat pai us operation ke dauran
0: ji
1: 6 terrorist जो मारे गए
0: जिस टाइम 15 पहले मार चुके थे 6 ही मारे 21 टेररिस्ट
1: जी तो आज हम शौर्य चक्र से सम्मानित मरणोपरांत कैप्टन उमंग भारद्वाज को याद करते हैं उनकी बहादुरी इनकी वीरता उनके शौर्य के लिए अदम्य साहस के लिए सर हम यहां पर समय बहुत कम बचा है मैं चाहूँगा कि जो मैसेजेस हमारे पास बहुत समय से आ गए थे उनको मैं आपको पढ़ करके बताऊं
0: जी
1: गुड आफ्टरनून का मैसेज है हितेंद्र दास का असम से आपके लिए और उसके बाद ये मैसेज है गुड आफ्टरनून टू कर्नल रेस्पेक्टेड सर एंड आरजे सर आई एम राइटिंग फ्यू वर्ड्स टू आर इंडियन आर्मी आई बो माय हेड विद इमेंस रेस्पेक्ट एंड प्राइड फॉर आवर बिलव्ड इंडियन आर्मी You protected our borders with unwavering courage. You served the nation with selfless dedication and you inspired every Indian with your sacrifices. Because of you, we live in freedom and peace. So entire nation is forever indebted to you, Indian Army. Jai Hind, Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai. Ye hai sir Shankar Lodh from Kakrola, Dwarka, Sector 15, Delhi se.
0: Thank you very much.
1: Aur आर्मी ऑफिसर को और आरजे सर को नमस्कार जय हिंद जय भारत यशवंत आडमुटे धारा शिव हैं सर ये महाराष्ट्र से आपको भी बहुत बहुत नमस्कार भारद्वाज साहब से मिलने में बहुत खुशी है जी वेलकम टू द शो श्रीकांत हैं सर ये टोल गेट त्रिची तमिलनाडु से
0: वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम थैंक यू वेरी मच
1: चरण कुमार हैं सर ये सन ऑफ श्री ब्रिजेश कुमार विलेज बरकतपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर स्टेट यूपी से और कर्नल भारद्वाज जी को मेरी ओर से जय हिंद जय भारत ये कह रहे हैं आपको सर
0: हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत सबको हमारे साथियों को सबको आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक
1: जी और सर हैं ये शांतचारा बादीगार कोकानूर हरिहार से देवनागरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका रिस्पेक्टेड सर संदेश सोल्जर इज अ वेरी मीनिंगफुल एंड हार्ट टचिंग प्रोग्राम यू प्रेजेंट ब्यूटिफुली रिमाइंडिंग अस ऑफ द सैक्रिफाइसेस

0: services, courage, and patriotism of brave soldiers who protect our nation day and night at the borders. Soldiers stay away from their families and perform their duties for the safety and security of our countrymen. Their dedication and selfless services are truly commendable, sir. Ye keh rahe hain. Heartfelt thanks to you for bringing such a meaningful program to us. Thank you so much. Aapne hamein suna aur aapne hamein message kiya. Aur hain sir ye Colonel Kamal कर्नल कमर भारद्वाज जी, जय हिंद. 71 आमने सामने के वार का विवरण सुनकर मन उत्साह से भर गया है. कमर जी का आज भी वही जज्बा महसूस हो रहा है सर, आपकी बात सुनकर के ही कह रहे हैं.
1: थैंक यू सो मच
0: जी. और नाम शुभ संध्या, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, शायद राजेश भल्ला एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से हैं ये. और यह है मैसेज, नमस्कार मेरठ से वीरू बख्शी, आपका टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी मेहनत करी आपने, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना. जय भारत माता की जय, वंदे मातरम. और भी सर बहुत सारे मैसेजेस हैं और समय बहुत कम हमारे पास बचा है. ये
1: अभी कुछ एक बार पूछ लो और ना
0: जी सर. अब हम मैसेजेस बहुत सारे, मैं सब नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय है बहुत कम हमारे पास. मैं सर बस चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आपकी और आपके जो फैमिली है उसका किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा. अब आप किन चीजों में इन्वॉल्व हैं सर रिटायरमेंट के बाद?
1: इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद में हमने एक स्कूल खोला था
0: जी,
1: बाय द नेम ऑफ कर्नल पब्लिक स्कूल. माना हुआ पब्लिक स्कूल है
0: जी,
1: CBSE 10+2
0: जी.
1: एंड आवर वॉलीबॉल टीम हैव बीन अंडर 19, अंडर 17
0: जी,
1: नॉट ओनली नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल चैंपियन
0: जी.
1: एंड आई हैड ए हॉस्टल आल्सो इन द स्कूल इटसेल्फ फॉर द बॉयज.
0: आर सब आप सोशल सर्विसेज में भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों की मदद करते हैं और आप जो लोग होते हैं जिनको मदद चाहिए सोशल सर्विसेज में, आप भी और आपका परिवार भी इसमें
1: सोशल सर्विस के उमंग के जाने के बाद में
0: जी.
1: हमने अपना ध्यान लगाया सोशल सर्विस एंड अदर थिंग्स के अंदर, जिसके अंदर के
0: जी
1: वन रैंक वन पेंशन, ये
0: अच्छा.
1: हमारा पूरा फाइट था
0: जी.
1: और आज हमारे पुराने फौजियों को, खास करके वार विडोज एंड विडोज को
0: जी,
1: जो फायदा मिला है और हम सबको, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है.
0: और सर उसमें आपने पूरी मेहनत की,
1: उसमें सारा जो प्रोटेस्ट था बहुत, आई वाज लीडिंग वन एंड ऑल द प्रोटेस्ट वाज मी माय वाइफ एंड मिस जाखड़ इज वाइफ. एंड दूसरा एक मैंने बहुत बड़ा ये टोल का यहाँ पे होता था बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव, MBS मॉल के पास में, जहाँ दो दो ढाई ढाई घंटे ट्रैफिक जैम होता था और इवन एम्बुलेंस और प्रेग्नेंट वुमेन वर नॉट एबल टू गेट थ्रू. एंड इन दैट वी आई वाज एबल टू गेट इट रिमूव्ड परमानेंटली फ्रॉम दैट.
0: आपने ये सब काम किए और
1: बिकॉज ऑफ
0: अभी आप लगे रहते हैं कुछ ना कुछ,
1: बिकॉज ऑफ मोटिवेशन ऑफ उमंग एंड माई सेल्फ is fully I've been involved in all these things and devoted to whatsoever maximum I can do, I must do till I am able to do something.
0: बिल्कुल सर, बहुत ही जोश भरी आपसे हमने बातें की आज और हमने याद भी किया कैप्टन उमंग भारद्वाज को भी, जिनको शौर्य चक्र से नवाजा गया मरणोपरांत उनकी बहादुरी के लिए. सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए. कर्नल कमर भारद्वाज, सेना मेडल सम्मानित, 1971 वॉर वेटरन. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में शामिल होने के लिए.
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको और पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय,
0: भारत माता की जय. और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, आपने हमें अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे. और 102.6 देश के नंबर वन रेडियो पर प्रोग्राम जारी रहेंगे. आगे है सैटेलाइट्स, मीना के साथ शायद को दें इजाजत.
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.
3: नमस्कार.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 MHz पर। स्टूडियो सीढ़ी में 9:30 हो चुके हैं। अब वक्त हो आ जाता है उर्दू प्रोग्राम नए रंग्स का।

0: हसबेंदोस्तूर, आज आप समाप्त कर सकेंगे मुशायरा जिसमें आपको अपना कलाम पेश सुनाएंगे आगा सरोश समीउल्ला समी जामिन अली मुसर्रत। इसके बाद दोस्तों, आपका पसंदीदा प्रोग्राम जो कि फिल्मी नगमों पर मबनी रहेगा, गीत सुरे लगाते जा में आप पसंदीदा नगमे समाप्त कर सकेंगे। और आखिर में पयामे शब से आज के उर्दू प्रोग्राम नए रंग का इख्तिताम होगा। आगाज पर समाप्त कीजिए हर्फ ताबिंदा, तहरीर और पेशकश है मोहतरमा आयशा बुतुल की।
1: इंसान की शख्सियत वो आईना है जो उसके ख्यालात, आमाल और आदात की अक्कासी करता है। एक मजबूत और मौसर शख्सियत ना सिर्फ जिंदगी में कामयाबी की जमानत बनती है बल्कि दूसरों पर भी मुस्बित असर डालती है। शख्सियत की नशोनुमा में कई पहलू अहम किरदार अदा करते हैं, उनमें सबसे पहले आता है खुद आगाही। शख्सियत की नशोनुमा का पहला और अहम कदम खुद आगाही है। इंसान को अपनी कुव्वतों, कमजोरियों, ख्वाबों, मकासद और जज्बात को पहचानने की ज़रूरत होती है। जब हम अपने आप को समझते हैं तो अपने अमल को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म कर सकते हैं। दूसरा पहलू है मुस्बित सोच। मुस्बित सोच इंसान की शख्सियत को मज़ीद निखारती है। मनफी ख्यालात से बचने की कोशिश करते रहने चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा रोशन पहलू देखने की आदत डालनी चाहिए। मुश्किलात को चैलेंज के तौर पर कबूल किया जाना चाहिए और उनसे सीखने का मौका हासिल करना चाहिए। तीसरा और इंतहाई अहम पहलू है मुताला। किताबें इंसान की शख्सियत की तामीर में अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छी किताबें पढ़िए, चाहे अखलाकियात की किताबें हों या फिर किसी मखसूस मौसू पर मबनी किताबें। मुताले से ना सिर्फ इल्म में इजाफा होता है बल्कि शख्सियत की गहराई और वसत में भी इजाफा होता है। समाजी ताल्लुकात भी शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। शख्सियत की नशोनुमा के लिए समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाना ज़रूरी है। दूसरों से मेल जोल रखना चाहिए, उनके ख्यालात को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी बातों को सलीके से पेश करना चाहिए। समाजी ताल्लुकात की मजबूती से इंसान की खुद एतमादी में इजाफा होता है। चौथा अहम

0: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो।
1: यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस स्टूडियो सी घड़ी में 9:38 हो चुके हैं। सामईन आइए आगे बढ़ते हैं, लीजिए समाप्त कीजिए इस महफिल का अगला प्रोग्राम मुशायरा, जिसमें आपको अपना कलाम सुनाएंगे आगा सरोश समीउल्ला समी, जामिन अली हसरत। लीजिए समाप्त कीजिए।
2: सामईन मोहतरम, ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद की जानिब से मुनक़िदा इस खुसूसी मुशायरे में आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आज के इस खुसूसी मुशायरे में शहर हैदराबाद के मुमताज़ व मारूफ शुरा शिरकत फरमा रहे हैं, जिनके इस्माए ग्रामी हैं समीउल्ला समी, डॉक्टर जामिन अली हसरत, आगा सरोश। आइए मैं इस मुशायरे का आगाज़ करने के लिए शहर के मारूफ शायर समीउल्ला समी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें।
3: मोअज़्ज़िज़ सामईन, आपकी खिदमत में गज़ल पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। अर्ज़ किया है कि उल्फत को

0: हमने रख लिया नफरत निकाल के, उल्फत को हमने रख लिया नफरत निकाल के, नफरत के सांप रखे नहीं दिल में पाल के, मंजर बदल गए हैं पुराने ख्याल के, मंजर बदल गए हैं पुराने ख्याल के, किरदार मस्क हो गए शीशे में हाल के, देखे हैं हम देखे हैं दौर हमने उरूजो जवाल के, देखे हैं दौर हमने उरूजो जवाल के, रखते हैं इसलिए ही कदम हम संभाल के, मतलब है कि कासे में अपने हमने किनात को डाल के, कासे में अपने हमने किनात को डाल के, इज्जत को अपनी रखा है हमने संभाल के। आखिरी मतलब है गजल का कि लाया हूँ मोती हुस्न का दरिया खंगाल के, लाया हूँ मोती हुस्न का दरिया खंगाल के, तरकीम करने तेरे कसीदे जमाल के। शेर है कि गिरता नहीं कभी मैं बुलंदी से इसलिए, गिरता नहीं कभी मैं बुलंदी से इसलिए, रखता हूँ साथ अपने मैं जीने जवाल के। शेर है कि दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए, दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए, अहबाब सारे गोया के पंछी थे डाल के। दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए, दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए, अहबाब सारे गोया के पंछी थे डाल के। शेर है के नादा कहा किसी ने तो पागल कहा कोई, नादा कहा किसी ने तो पागल कहा कोई, तोहफे मिले हैं हमको ये सिदके मकाल के, तोहफे मिले हैं हमको ये सिदके मकाल के।
1: फिर सुना ये, वाह वाह वाह।
0: नादा कहा किसी ने तो पागल कहा कोई, तोहफे मिले हैं हमको ये सिदके मकाल के।
1: क्या बात है।
0: शेर है कि आखिरी शेर है मकते से पहले कि कैरात हम छुपा के ही देते हैं दोस्तों, खैरात हम छुपा के ही देते हैं दोस्तों, खैरात हमने दी नहीं सिक्का उछाल के, खैरात हमने दी नहीं सिक्का उछाल के, खैरात हम छुपा के ही देते हैं दोस्तों, खैरात हमने दी नहीं सिक्का उछाल के। मख्ता कुछ यूं है कि कैसे मिलेगा दिल का सुकून अब हमें समी, कैसे मिलेगा दिल का सुकून अब हमें समी, मिलते नहीं जो आज निवाले हलाल के, मिलते नहीं जो आज निवाले हलाल के। दूसरी गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। मतलब है कि आईने कभी झूठी वजाहत नहीं करते, आईने कभी झूठी वजाहत नहीं करते, दागों को छुपाने की हिमाकत नहीं करते, दागों को छुपाने की हिमाकत नहीं करते, उसने बतलाया कि भूले से हमारी वो शिकायत नहीं करते, भूले से हमारी वो शिकायत नहीं करते, अफसोस क्या वो हमसे मोहब्बत नहीं करते, अफसोस क्या वो हमसे मोहब्बत नहीं करते। आखिरी मतलब है कि एहसास से कनाअत की बदौलत नहीं करते, एहसास से कनाअत की बदौलत नहीं करते, हम अपनी मुसीबत की सराहत नहीं करते, हम अपनी मुसीबत की सराहत नहीं करते, शीशे की तरह साफ जो रखते हैं दिलों को, शीशे की तरह साफ जो रखते हैं दिलों को, गीबत की कभी उन पे तबाहत नहीं करते, गीबत की कभी उन पे तबाहत नहीं करते। शेर के बाजार मोहब्बत में मियाँ सूद और जियाँ क्या, बाजार मोहब्बत में मियाँ सूद और जियाँ क्या, हम इश्क की दुनिया में तिजारत नहीं करते, हम इश्क की दुनिया में तिजारत नहीं करते। मखता है कि अच्छों की समी अपनी ही पहचान अलग है, अच्छों की समी अपनी ही पहचान अलग है, वो लोग कोई पैदा मुसीबत नहीं करते, वो लोग कोई पैदा मुसीबत नहीं करते, आईने कभी झूठी वजाहत नहीं करते, दागों को छुपाने की हिमाकत नहीं करते।
1: वाह वाह वाह।
0: कुछ गजल के कुछ मतलब और कुछ शेर समाप्त कीजिएगा कि मतलब कि वो दौर जिसमें था भाईचारा, वो दौर जिसमें था भाईचारा है गम हमें के गुजर गया वो दौर जिसमें था भाईचारा है गम हमें के गुजर गया वो, थी जिसमें इंसानियत वो इंसान सुना है हमने के मर गया वो, सुना है हमने के मर गया वो, लुहू लुहू है हर एक मंजर है आस्तीने वफा में खंजर, लुहू लुहू है हर एक मंजर है आस्तीने वफा में खंजर, अगर न उतरा ये पीठ में तो समझ लो दिल में उतर गया, समझ लो दिल में उतर गया वो, लुहू लुहू है हर एक मंजर है आस्तीने वफा में खंजर, अगर ना उतरा ये पीठ में तो समझ लो दिल में उतर गया वो,

0: शोहरतों की अजीब रुत है, ये शोहरतों की अजीब रुत है इसमें जो भी अनाम धुत है।
1: क्या बात,
0: ये शोहरतों की अजीब रुत है इसमें जो भी अनाम धुत है, बदल बदल कर ये वक्त चेहरा सुना के ऐसी खबर गया वो, बदल बदल के ये वक्त चेहरा सुना के ऐसी खबर गया वो। अकेला शेर के अकेला खतरों से खेलता था, गमों को तन्हा जो झेलता था। अकेला खतरों से खेलता था, गमों को तन्हा जो झेलता था। जब आई बच्चों की बात उसके, कुछ ऐसा टूटा बिखर गया वो। जो जहाँ से निकला तो भीगी आंखें, जो जहाँ से निकला तो भीगी आंखें, जुमा पे आया तो होंठ कांपे। ये दर्द ऐसा था बेबसी का, दिलों पे करके असर गया वो। आखिरी शेर है कि सफर में झूठ और मसलहत के, जमीर आया ना साथ मेरे। जहां से मैंने कदम बढ़ाया उसी जगह पर ठहर गया वो। जहां से मैंने कदम बढ़ाया उसी जगह पर ठहर गया वो। मगता है कि समी पौधे लगाओ जिनके, घने हो साए समर हो मीठे। समी पौधे लगाओ जिनके, घने हो साए समर हो मीठे। जो याद कर ले तुझे तो बोले, लगा के अच्छे शजर गया वो।
1: बहुत
0: बहुत शुक्रिया
1: समी ने मोहतरम। अभी आप समीउल्लाह समी साहब को सुन रहे थे। अब डॉक्टर जामिन अली हसरत से उनका कलाम समाप्त फरमाइए। डॉक्टर जामिन अली हसरत,
2: गज़ल का एक मतलब दो शेर मुराजा करें कि दोस्ती की जो हरदम दुहाई देता है, दोस्ती की जो हरदम दुहाई देता है, वो दोस्त होके भी दुश्मन दिखाई देता है।
1: क्या बात,
2: दोस्ती की जो हरदम दुहाई देता है, वो दोस्त होके भी दुश्मन दिखाई देता है। सुने हैं चर्चे बहुत उसकी भी सखावत के, रो भाई
1: बहुत अच्छा।
2: सुने हैं चर्चे बहुत उसकी भी सखावत के, पहाड़ लेके जो बदले में राई देता है।
1: बहुत अच्छा,
2: पहाड़ लेके जो बदले में राई देता है। पसीना जब भी मैं बहाता हूँ बूंद बूंद अपना, पसीना जब भी मैं बहाता हूँ बूंद बूंद अपना, अज्र में मेरा खुदा पाई पाई देता है। अज्र में मेरा खुदा पाई पाई देता है। एक गजल के दो चार शेर मुलाजा करें कि गजल का मतलब है, गुलहाए बंदगी दिले कमतर में डाल दे, गुलहाए बंदगी दिले कमतर में डाल दे, मालिक जुनून इश्क मेरे सर में डाल दे।
1: बहुत अच्छा, बहुत खूब।
2: गुलहाए बंदगी दिले कमतर में डाल दे, मालिक जुनून इश्क मेरे सर में डाल दे। शेर मुलाजा करेंगे, तस्वीर तू बनाता है मेरे लहू से जब, तस्वीर तू बनाता है मेरे लहू से जब, जलता हुआ मकान भी मंजर में डाल दे।
1: बहुत अच्छा है,
2: जलता हुआ मकान भी मंजर में डाल दे। शेर मुलाजा करें रो भाई के, या तो चमन में फूल की सूरत इन्हें खिला, या तो चमन में फूल की सूरत इन्हें खिला, या मेरे आंसुओं को समंदर में डाल दे।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब।
2: या तो चमन में फूल की सूरत इन्हें खिला, या मेरे आंसुओं को समंदर में डाल दे। शेर मुलाजा करें के, फूलों की पत्तियों को मिली है नमी मगर, फूलों की पत्तियों को मिली है नमी मगर, शबनम का सारा दर्द गुले तर में डाल दे। फूलों की पत्तियों को मिली है नमी मगर, शबनम का सारा दर्द गुले तर में डाल दे। नींदे मेरी महकती रहेंगी तमाम उम्र। शकील भाई
1: जी
2: मुलाजा करें कि नींदे मेरी महकती रहेंगी तमाम उम्र, यादों के फूल ला मेरे बिस्तर में डाल दे।
1: अच्छा,
2: नींदे मेरी महकती रहेंगी तमाम उम्र, यादों के फूल ला मेरे बिस्तर में डाल दे। सरोज साहब मख्ता मुलाजा करें कि हीरे जवाहरात की हसरत नहीं मुझे, हीरे जवाहरात की हसरत नहीं मुझे, मोती सुकून दिल के मेरे घर में डाल दे। हीरे जवाहरात की हसरत नहीं मुझे, मोती सुकून दिल के मेरे घर में डाल दे। गुलहाए बंदगी दिले कमतर में डाल दे, मालिक जुनून इश्क मेरे सर में डाल दे। एक गजल का मतलब मुलाजा करें कि हवा के जोर से मजबूत रस्सा टूट जाता है, हवा के जोर से मजबूत रस्सा टूट जाता है, हमारा हौसला टूटे तो क्या क्या टूट जाता है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
2: हवा के जोर से मजबूत रस्सा टूट जाता है, हमारा हौसला ٹوٹے، ہمارا حوصلہ

0: टूटे तो
1: क्या
0: क्या क्या
1: कहने
0: टूट
1: सर,
0: जाता है।
1: वाह
0: शेर मुलाहजा करें कि यहाँ एहसास अपना कैद में रखो तो बेहतर है,
1: वाह वाह
0: यहाँ एहसास अपना कैद
1: वाह
0: में रखो तो बेहतर है, जमाने भर की तहरीरों से चेहरा टूट जाता है।
1: बहुत
0: वाह
1: अच्छा है,
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छा,
0: यहाँ एहसास अपना कैद में रखो तो बेहतर है, जमाने भर की तहरीरों से चेहरा टूट जाता है।
1: वाह
0: मैं खुद को देखता हूँ जब कभी माजी के शीशे में,
1: क्या बात है,
0: वाह
1: बहुत अच्छा
0: वाह,
1: मिश्रा है,
0: मैं खुद को देखता हूँ जब कभी माजी के शीशे में, तमाचा हाल का लगता है शीशा टूट जाता है।
1: बहुत अच्छा है, बहुत
0: वाह
1: अच्छा
0: जो
1: है,
0: फिर
1: बहुत
0: बढ़िया
1: अच्छा
0: सर, वाह
1: लगता
0: वाह,
1: लगता है,
0: मैं
1: वाह
0: खुद को देखता हूँ जब कभी माजी के शीशे
1: बहुत अच्छा
0: में,
1: है, बहुत खूब,
0: वाह,
1: बहुत खूब,
0: तमाचा हाल का लगता है
1: वाह वाह वाह,
0: शीशा टूट जाता है,
1: बहुत अच्छा, वाह वाह,
0: वफा का पास रखता है भला कोई जमाने में।
1: क्या
0: एक
1: बात
0: शेर
1: है,
0: देखिए कि वफा का पास रखता है भला कोई जमाने में, जरा सी देर में बरसों का रिश्ता टूट जाता है।
1: बहुत
0: वाह
1: अच्छा,
0: वाह,
1: बहुत खूब,
0: वफा का पास रखता है भला कोई जमाने में,
1: वाह
0: जरा सी देर में बरसों का रिश्ता टूट जाता है। शेर मुलाहजा
1: वाह,
0: करेंगे, तड़प मंजिल की है तो हौसला चट्टान कर लेना।
1: क्या बात है, वाह वाह,
0: तड़प मंजिल की है तो हौसला चट्टान कर
1: क्या बात,
0: लेना, हवा जब तेज चलती है तो सहरा टूट जाता है।
1: क्या बात, वाह,
0: तड़प मंजिल की है तो चट्टान तड़प मंजिल की है तो हौसला चट्टान कर लेना, हवा जब तेज चलती है तो सहरा टूट जाता है।
1: वाह,
0: तमन्ना मुझको मंजिल की लिए फिरती है बरसों से,
1: वाह वाह वाह,
0: तमन्ना मुझको मंजिल की लिए फिरती है बरसों से, मगर मंजिल के पास आते ही रास्ता टूट जाता
1: क्या
0: है।
1: बात,
0: क्या
1: वाह
0: बात,
1: वाह वाह,
0: मगर
1: मंजिल
0: मंजिल के
1: के
0: पास आते ही रास्ता
1: रास्ता
0: टूट
1: टूट जाता
0: जाता
1: है।
0: है। मख्ता मुलाजा करें रो भाई कि हकीकत है ये हसरत और मेरा तजुर्बा भी है,
1: वाह,
0: हकीकत है ये हसरत
1: और
0: और
1: मेरा
0: मेरा
1: तजुर्बा
0: तजुर्बा
1: भी
0: भी
1: है,
0: है,
1: वाह,
0: अगर सच्चे की सोहबत हो तो झूठा टूट जाता
1: बहुत
0: है।
1: अच्छा,
0: वाह
1: बहुत
0: वाह,
1: खूब, बहुत अच्छा,
0: हकीकत है ये हसरत और मेरा
1: सच्चे की
0: तजुर्बा भी
1: सोहबत
0: है,
1: हो तो झूठा टूट
0: वाह,
1: जाता
0: अगर सच्चे की सोहबत हो तो झूठा टूट
1: है, वाह
0: जाता
1: वाह,
0: है,
1: बहुत अच्छा,
0: हवा
1: माशाल्लाह,
0: के जोर से मजबूत रस्सा टूट जाता है,
1: क्या बात है,
0: हमारा हौसला टूटे तो क्या क्या टूट जाता
1: बहुत
0: है।
1: अच्छा,
0: वाह,
1: बहुत खूब,
0: डॉक्टर जामिन अली हसरत अपना कलाम पेश कर रहे थे। आइए अब मैं शहर के मुमताज़ व मकबूल मुतरन्नुम शायर आगा सरोज साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने कलाम से हमें नवाजे। आगा सरोज साहब।

0: वाह वाह वाह, बहुत बहुत बहुत कुछ समंदर के अलावा, बहुत
1: समंदर के अलावा। और ये आखिरी शेर।

0: शुक्रिया।
1: समय ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस स्टूडियो से घड़ी में 10:05 हो चुके हैं। अभी आप समाप्त कर रहे थे मुशायरा। मुशायरे के अंदर आपको अपना कलाम सुना रहे थे आगा सरोज, समीउल्ला समी, जामिन अली हसरत। समीन लीजिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जाओ। और साथ में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑन रूरल वुमर के बारे में। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सामईन, आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा, और साथ में हम बात कर रहे हैं दही खवातीन का आलमी दिन। सामईन, इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद दही इलाकों में रहने वाली खवातीन की अनथक मेहनत, इनकी कुर्बानियों और ज़िरात खुराक की हिफाजत और दही तरक्की में इनके कलीदी किरदार को सहराना है। दही खवातीन किसी भी माशरे की माशी और समाजी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन इसके बावजूद वह अक्सर बुनियादी हकूक और सहूलियात से महरूम रहती है। सामने इसी तरह हम बात करते रहेंगे, लीजिए समात कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। सामिन, अभी आप समाप्त कर रहे हैं दही खवातीन का आलमी दिन। सामिन, दुनिया की तरक्की में खवातीन का किरदार नहायत अहम है। खवातीन माशरे की तामीर व तरक्की में मर्दों के शाना बशाना काम करती है। ख़ास तौर पर दही खवातीन ज़िरात, मवेशी पालने, घरेलू सनतों, बच्चों की परवरिश और ख़ानदान की देखभाल में अहम किरदार अदा करती है। इनकी मेहनत से न सिर्फ घर का निज़ाम चलता है बल्कि मुल्क की मौशियत को भी मजबूती हासिल होती है। सामाइन, इस तरह हम बात करते रहेंगे लेकिन इस नगमे के बाद। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा मोहम्मद अजीज़ और साथियों की आवाज़ में।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। इस रेडियो सी घड़ी में 10:24 हो रहे हैं। अभी आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मैं अपनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा, और साथ में हम बात कर रहे थे दही खवातीन का आलमी दिन। सामीन, अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 18 दिसंबर 2007 को एक करारदाद के जरिए 15 अक्टूबर को दही खवातीन का आलमी दिन करार दिया। इसका मकसद दुनिया को ये बारो करना था कि दही खवातीन न सिर्फ अपने घरों को संभालती है, बल्कि वो दुनिया की खुराक का निज़ाम चलाने में भी बराबर शरीक है।

दुनिया भर में ज़िरात से वाबस्ता अफराद की क़ुव्वत का एक बड़ा हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है। फसलों की बोई से लेकर कटाई तक, मवेशियों की देखभाल से लेकर दूध और दिगर मसनूआत की तैयारी तक, हर मरहले पर दही ख़वातीन का किरदार नुमाया होता है। अगर ये कहा जाए कि दुनिया की भूख और ग़िज़ाई किल्लत से बचाने

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। समय न भी आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमा पर अपने प्रोग्राम गीत सुरेले गाते जा, और साथ में हम बात कर रहे थे आलमी योम दही खवातीन के दिन के मुतालिक चंद बातें। समय ये दिन हमें याद दिलाता है कि दही खवातीन सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियां नहीं निभाती बल्कि वजीरात, खुराक की पैदावार और दही मानशियत की तरक्की में भी बुनियादी किरदार अदा करती है। इनकी मेहनत के बगैर दही जिंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। दही खवातीन की जिंदगी मेहनत, सब्र और कुर्बानी की मिसाल है। वो सुबह सवेरे उठकर घर के काम अंजाम देती है, बच्चों की देखभाल करती है, खाना पकाती है और खानदान के दिगर अफराद की जरूरियात पूरी करती है। फसलों की कटाई में हिस्सा लेती है, बीज बोती है और मवेशियों की देखभाल करती है। समय इस तरह हम बात करते रहेंगे, लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सामईन, बहुत सी खवातीन दूध, दही, मक्खन और दिगर अशिया तैयार करके खानदान की आमदनी में इजाफा करती है। बास, सिलाई, कटाई, दस्तकारी और घरेलू सनतों के ज़रिए भी रोज़गार हासिल करती है। इनकी ये कोशिशें ना सिर्फ ख़ानदान को माशी सहारा फराहम करती है बल्कि मुल्क की मईशत को भी मजबूत करती है। लीजिए समझ कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। सामईन आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मैं अपनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा। सामईन आज 15 अक्टूबर है तो आज इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमन के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर्स डे भी है, यानी अगर उर्दू में कहा जाए तो योम कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, जिसको हम EME कोर डे के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं इसके मुतालिक चंद मालूमात। EME कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स भारतीय फौज का वो मजबूत इंजीनियरिंग सोन है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि फौज का हर हथियार, गाड़ी, तैयारा और मौसलाती निज़ाम हर वक्त जंग के लिए तैयार रहे। हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाने वाला ये दिन इस अहम तरीन तकनीकी फौजी फोर्स की क़याम की याद दिलाता है जो अपने इंतहाई मुतासिर को नज़्बुलाइन कर्म ही धर्म यानी काम ही इबादत के तहत काम करने वाली फौजी नज्म ज़ब्त और जदीद तरीन इंजीनियरिंग की महारत एक बेहतरीन इम्तिजाज है। इस कोर की तारीख दूसरे जंगे अजीम के उरूज से जुड़ी है। जैसे ही फौजें रिवायती घोड़सवार दस्तों से निकलकर मशीनी और टैंकों वाले यूनिट्स में तब्दील हुई, इंजीनियरिंग और मरम्मत के माहिर दस्तों की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ गई। चुनाचे 15 अक्टूबर को इस फोर्स को बाकायदा तौर पर इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से कायम किया गया। समझ लीजिए, समाप्त कीजिए एक नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सामईन, आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा। सामईन, 1947 में आज़ादी के बाद इसके नाम से लफ्ज़ इंडियन हटा दिया गया और यह कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स बन गई। सामईन, आज़ाद मुल्क की दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसमें बड़े पैमाने पर तब्दीली दी गई की गई। दिहाइयों बाद जब जंगी हिकमत अमली में पेचीदा रडार, सैटेलाइट सिस्टम्स और कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ा तो इलेक्ट्रिकल की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल कर दिया गया। फौजी हिकमत अमली में गोला बारूद और फौजियों की तादाद इस वक्त तक बेमाने है जब तक हथियार सही काम ना करे, मौसलाती निज़ाम ठीक ना हो जाए। ईएमई कोर मुल्की दिफाई आलात के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। इनका बुनियादी मकसद हर हालत में आलात को चालू रखना होता है और ये फौज के हिस्से में मौजूद रहते हैं। ईएमई के इंजीनियर्स सिर्फ पीछे वर्कशॉप में नहीं बैठते, जंग के दौरान ये टीमें फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले दस्तों के साथ साथ चलती है। दुश्मन की गोलियों की बौछार के दरमियान भी ये टैंकों और तोपों की मरम्मत का काम करते हैं ताकि जंगी कार्रवाई ना रुके। लीजिए, समा कीजिए ये नगमा।

सामईन, यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। सामईन, सियाचिन की ग्लेशियर्स की हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी और ऑक्सीजन की कमी हो या थार के रेगिस्तान की झलसा देने वाली गर्मी, ईएमई के जवान हर नामवाफिक मौसम और इलाके में रडार और इंजनों की देखभाल का काम कामयाबी से अंजाम देते हैं। ये कोर आर्मी एविएशन विंग के हेलीकॉप्टर्स की परवाज की सलाहियत और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स की मरम्मत की मुकम्मल जिम्मेदार है। लीजिए समझ कीजिए यह नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। सामईन अभी आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा। लीजिए समाप्त कीजिए इस महफिल का आखिरी प्रोग्राम पयाम-ए-शब। तहरीर और पेशकश होगी नदीम अख्तर जैदी की।

0: कुछ बिखरी हुई यादों के किस्से भी बहुत थे, कुछ उसने भी बालों को खुला छोड़ दिया था। बाज़ यादें इंसान के दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं, मगर हमें माजी में उलझकर अपने हाल को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जिंदगी में गुजरे हुए खूबसूरत लम्हात हमेशा याद रहते हैं, मगर यादों को दिल में महफूज रखना और उनमें खो जाना दो अलग बातें हैं। माजी हमें खुशी, तजुर्बा और सबक दे तो उसे नेमत समझे, लेकिन अपने आज और आने वाले कल को माजी के हवाले न करें। खूबसूरत यादों को मुस्कुराहट के साथ याद करें और जिंदगी का सफर आगे बढ़ाते रहें।
1: समय ना स्टडी सीढ़ी में रात के 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हात में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बारी बारी से दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: தாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है. श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी.
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है. आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है. इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी.
0: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी. नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. G-SAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है. सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है. दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है. इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे. वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा. सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता. न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है. निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR करने का निर्देश दिया है. इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है. दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में कल प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू की हैं. नई दिल्ली में आज आयोजित प्रेस वार्ता में DCP नेहा यादव ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की कि वे ऐसे किसी भी भीड़ में शामिल न हो जो धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो. उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है. नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है. उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है. श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Shagun Chopra with my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य। ए के बी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है शगुन।
0: Yes, benchmark domestic indices surge around 2%. Sensex jumps over 1500 points. Nifty settles at nearly 23,000 level. Country's merchandise exports rise over 23% to $44.4 billion in September this year. And global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 2% का उछाल। सेंसेक्स में 1500 से ज्यादा अंकों की तेजी। निफ्टी 23,000 अंक के आसपास बंद हुआ। देश का उत्पाद निर्यात इस वर्ष सितंबर में 23% की बढ़त के साथ $44.4 अरब बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट।

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक यानी 2.11% उछलकर 74,316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक यानी 1.66% की तेजी के साथ 22,997 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार का प्रदर्शन आज मुख्य सूचकांकों के मुकाबले कमजोर रहा। मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.4% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% नीचे आ गया।
0: Benchmark domestic equity indices ended higher today. The Sensex surged to 1,534 points or 2.11% to close at 74,316. The Nifty rose 375 points or 1.66% to settle at 22,997. The broader market at the National Stock Exchange underperformed the frontline indices. The mid-cap 100 index dropped nearly 0.4% and the small-cap 100 index shed 1.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 27 कंपनियों के शेयरों में आज तेजी दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा 4.6% ऊपर आया, आईसीआईसीआई बैंक 4.2% के लाभ में रहा और रिलायंस में 4% की बढ़त दर्ज हुई। इसके विपरीत बीईएल और ट्रेंट में 0.6% की गिरावट आई, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.1% से ज्यादा नीचे आ गया।
0: In the sectoral indices on the BSE, 15 out of 28 sectors ended in the positive note. Among the top gainers, top 10 banks climbed 2.3%, private banks advanced over 1.8%, and IT jumped 1.5%. In contrast, capital goods dropped over 2.4%, power slipped more than 1.8%, and PSU banks dipped 1.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,668 companies declined, 1,720 advanced, and 203 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले आज 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 रुपए पर बंद हुआ। एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एकेबी, आज के मार्केट की हम बात करें तो सेंसेक्स में हमने देखा लगभग 1,500 अंक से अधिक का उछाल आया, वहीं निफ्टी भी 23,000 के आसपास पहुंच करके बंद हुआ। कई दिनों बाद ये आंकड़े हमारी आंखों के सामने हमें नजर आ रहे हैं, तो इन तेजी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, घरेलू कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, या फिर इसे बाजार में एक मजबूत वापसी का संकेत माना जा सकता है?
2: देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बाजार में मजबूती आने का ये संकेत है। ये जो आज का जो उछाल आपने देखा है, इसको हमें बारीकी से देखना है। इस उछाल में के पीछे

0: आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि हालांकि ये एक लार्ज कैप स्टॉक सेंटर्ड रैली है, इसमें अगर आपने जैसे अभी पढ़ा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आई है
1: जी।
0: तो ये रैली सिर्फ फोकस्ड है लार्ज कैप स्टॉक में, ये रैली सिर्फ फोकस्ड है आईटी सेक्टर में, ये रैली फोकस्ड है प्राइवेट सेक्टर बैंकों में। आपको मालूम होगा कि कल सरकार ने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया था कि आईडीबीआई बैंक का स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन होगा उसका। सो उसी का एंड आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा एक जो Q2 जो रिजल्ट जो आ रहे हैं उसमें काफ़ी उछाल आया है और उसी के कारण हम ये देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक में आपका जो बढ़त आज आपको हासिल हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बढ़ोतरी हमें पिछले कई महीनों में दिखी वो आज वो काफ़ी गिरावट में आई। उसका कारण भी ये है कि काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई आज क्योंकि उस लेवल में, और दूसरी बात यह है कि जो रुपया जो है और रुपए में थोड़ी मजबूती आई है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिसीशन से, उससे भी जो मार्केट में थोड़ी बहुत मजबूती आई है। पर अगर आप ये समझे कि आज की जो मजबूती आप देखी ये कोई अगले दिनों का संकेत है ये मैं नहीं मानूंगा। ये वॉलेटिलिटी जो मार्केट में है वो अभी भी चलती रहेगी और ये एक रिकवरी फेज है और रिकवरी फेज का कारण जैसे मैंने कहा आईटी सेक्टर और प्राइवेट बैंकिंग में और लार्ज कैप स्टॉक में जो एक रिकवरी और Q2 अर्निंग्स की जो एक मजबूती है वो दर्शाती है।
2: सर, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स दे फेस प्रेशर डिस्पाइट द रैली इन द मार्केट। So, and I have two questions for you.
0: Sure.
2: Both of them I'll question right now only. So, does this imply that investors are concentrating their capital only in select large cap companies? First one. And what signal should retail investors take from this particular divergence?
0: So, I think what the investors are doing is they are pulling their money out of the small and the mid cap stocks. Because the small and the mid-cap stocks had already appreciated to a level where profit booking was possible. Mm. So they are pulling their money out. And they are also reinvesting in the large-cap stocks and taking positions and keeping their powder dry because we are entering into a major big IPO phase. And when you are entering into a major IPO phase, like the Jio, Reliance Jio IPO is going to hit the markets very soon. It will be one of the largest IPOs. So that IPO would mean that the domestic investors are gearing up for that position. So I think the mid-cap and the small-cap profit booking has led to the surplus which is going into the large-cap, and the large-cap is being positioned as a preparatory step for investing in the new IPOs that are coming.
1: AKB, आज IT और banking shares ने market को काफी सहारा दिया, आपने भी IT shares का जिक्र किया है, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में काफी कमजोरी देखी जा रही, तो इन्हीं sectors में बाजार आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई ऐसा phase आपको लगता है कि आने वाले समय में बिकवाली जो व्यापक हो रही है उसमें कुछ कमी आएगी और सभी चीज़ों में आगे एक जैसा माहौल देखने को मिलेगा?
0: आपने एक बहुत सही प्रश्न किया है। मुझे लगता है कि जो आईटी सेक्टर की जो स्ट्रेंथ जो है बहुत क्वार्टर के बाद एआई की जो चपेट आईटी सेक्टर में आई थी उसको उसके ऊपर जो इंडियन आईटी सेक्टर की जो बायोन्सी जो रेजिलियंस जो है उसको दर्शा रहा है और बहुत क्वार्टर के बाद जो Q2 अर्निंग्स जो आ रही हैं सब आईटी कंपनीज की Q2 अर्निंग्स में बहुत बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और उसी के लिए मैं समझता हूँ कि आईटी सेक्टर को हमें ट्रैक करना पड़ेगा और किस तरह से हम आगे आईटी सेक्टर को देखेंगे उसको हमें ये एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर रहेगा मैं समझता हूँ।
2: Also, Mr. Bhattacharya, PSU bank performance. I mean, what's your opinion about PSU bank performance? Is now a